सुचा के रखियो कोई ना भेटियो जा सुचा हुए के जीविया लगा पढ़न सलोक बहुती डाई सटिया किसे हो लगा दो आन देवता पानी देवता भाई संतर देवता नू पंजवा पाक तो हो पा।

人把我的奔头说给我们的一天，这次怎么

ਜਿਤ ਜਮਾ ਹੈ।

थोड़ी सा को आखे अपना जिसना ही सो पिन कटिया किता आपो अपना पे लेखा संडिया जा रहना नहीं है तो जगता बाद कर भंडी है मंदा किसने आखिया पड़ करे हो बुझी है मूर्ख नाल ना लुझी है गौर सिखा।

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कांडी ऐसा धीरे समाए, चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा होए, आस के होना आखी है जिले खबरते सोए महला दूजा।
1: सलाम जवाब दो करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़ियां थाए न काई पाए, पौड़ी जित सेवे सुख पाई, ऐसो साहेब सदा

ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ।

साहेब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास पुरख मन पुर हो नानक सिफत विकास महला।

0: नानक अंतना जापनी हरता के परावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना कली जन जीरे अक्तुरी चढ़ा किसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करना जन किया फिर तेसी करनी सा
1: गुरु रामदास जन पायो गुरु राम

0: ਅਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थिल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक

मैं ता रखिया गुनाहा नू लुका के कि लोकां पाने कुंड कड्या। आपा सुन रहे सी ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नू। मंग के पाईए कज नहीं हुंदा, लुट के खाईए रज नहीं हुंदा, बाज इश्क दे काबे जाइए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। त्या हुन सुनदिया शफकत अली खान दी ए सूफी रचना, मैंडा इश्क भी तू दीन भी तू

मैंडा दीन भी तू ईमान भी तू। हुणे तुसीं शफाकत अली खान दी आवाज च इस सूफियाना कलाम सुनिया। ते आहुन प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे आं आबिदा प्रवीण नूं। मैं भी झोक रांझण दी जाणा नाल मेरे कोई चले।

अभगत कराऊं साहब जन जी सदाबहार आवास में कलाम दिल ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिंसर पेश है तबसरो प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 जुलाई 2026 ते ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात कई भारत न्यूजीलैंड हिकमत अमली भाईवारी जो ऐलान कयो प्रधानमंत्री 2030 लाइ रोडमैप के ऐलान कयो जैमें गडियल कार्रवाई कई वेंदी इन खां अलावा भारत न्यूजीलैंड हिकमत अमली भाईवारी के ईंदड़ 4 सालन दौरान वधीक पुख्तो बणायो वेंदो हिकमत अमली भाईवारी में घणो कुझु शुमार आहे पर इहा को महदूद कोन्हे रोडमैप में घणाई अलहदा थंबा रखिया विया आहिनि सियासी ऐं मतबरी मशगूली जे मौज़ू में ॿई मुल्क गॾिजी करे कमु कंदा तंहिंमें बाक़ायदा गॾिजाणी ईंदियूं ऐं हिक ॿिए जे मुल्कनि जी यात्रा ईंदियूं तंहिंमें सदन प्रधानमंत्री ऐं काबीना वज़ीर अची था वञनि तंहिंमें इलाक़ाई ऐं ॿहु तरफ़ी वाकिया पिण शुमार आहिनि इन सां ऊची समझ जो सहकार बाक़ायदा पाड़ी वज़रनि जे डायलॉग ज़रिए थींदो रहंदो इन खां अलावा वज़रातुनि ऐं सरकारी खातनि मंझि मशगूलियुनि ज़रिए पिण थींदो रहंदो जेको हिकु करनि फ़ाइदनि खे सर्व कंदो सरकार सां सरकार जो सहकार तंहिं लाइ पाण मैकेनिज़म रखियल आहे ऐं इहो सभु कुझु रोडमैप 2030 तहत रखियल आहे ॿिन्ही मुल्कनि मंझि बचाव ऐं सुरक्षा तावन पिण बाक़ायदा फ़ौजी मशकुनि ज़रिए वधायो वेंदो तंहिंमें अची थो वञे मैरीटाइम एयर ऐं लैंड यूनिट्स नंढे अरसे जी पर्सनल एक्सचेंजिस इन खां अलावा रांदियुनि जा वाकिया डिफेंस स्टाफ कॉलेज एक्सचेंज ऐं ओची सवन जी बचाव ॻाल्हियूं तंहिंमें साल 2025 जे भारत न्यूज़ीलैंड सूबे जे चिठे खे पिण अमल में आंदो वेंदो जेको बचाव सहकार ऐं बाक़ायदा बचाव मशगूलियुनि लाइ कयो वियो हो ॿई मुल्क गॾिजी करे कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिसल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ते पिण कमु कंदा त जीअं कुदरती आपदाउनि वक़्तु उन्हनि जो बहितरी सां मुक़ाबिलो कयो वञे वापार ऐं माशी तावन में ॿई मुल्क गॾिजी करे पंहिंजे ॿितरफ़े वापार ऐं सेवाउनि जे मक़सद खे साल 2030 ताईं 7 बिलियन न्यूज़ीलैंड डॉलर ताईं आणींदा यानी कि 35,000 करोड़ रुपया इन खां अलावा भारत न्यूज़ीलैंड आज़ाद वापार करार ते पिण कदम खया वेंदा त जीअं जल्द बि जल्द इनखे अमल में आंदो वञे भारत ऐं न्यूज़ीलैंड गॾिजी करे साल 2025 जे सूझबूझ जे चिठे ते कमु कंदा जंहिंमें हॉर्टीकल्चर ऐं एनिमल हस्बेंड्री ऐं डायरिंग सां वाबस्ता गॾियल खोजना ॼाण जी मट सटा ऐं तकनीकी ऐं पॉलिसी तावन ॾिनल आहे सैर सफ़र ऐं ॿितरफ़े सैलानियुनि जे वहिकरे लाइ तंहिंखां अलावा सैर सफ़र खेत्र में हुनर खे वधाउ ॾियण लाइ पिण कमु कयो वेंदो रांदियुनि में पिण 2025 जे सूझबूझ जे चिठे मुताबिक़ एमओयू जे मुताबिक़ हिक ॿिए खे सहकार ॾिनो वेंदो रवायती दवाउनि ते पिण ऊची समझ जी माहिरत जी मट सटा कई वेंदी ॿई मुल्क सकाफ़ती तावन ते पिण कमु कंदा इन खां अलावा मकानी सरकारुनि मंझि पिण सहकार खे हथी ॾिनी वेंदी

मुझे मुल्कन मनी वायदा आर्मी बायोफिल बायोफिल अलायंस के हथियार निवेदी भाई मुल्क गड़जी करे मुत जमायत में ताउन के पुख्तो करने लाइ कम कंदा तह में मुत जमायत में सुधारा शुमार आहिन तह में सुधारा आंदल सलामती काउंसिल में भारत जी दायमा मेंबरशिप जी उम्मीदवारी पिण शुमार आहे। भारत ऐं न्यूज़ीलैंड हिकमत अमली भाईवारी साल 2030 जो नक्शो तह में के बि माली वचनबद्धता कोन्हे ऐं न ई को हिक ॿिए जे ॾेही या आलमी क़ाइदनि तहत शर्तनि खे मञण जी का लीगल बाइंडिंग आहे। तव्हां तसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधो। हींअर पेश आहिनि कुझु भॼन कलाम ऐं गीत आगाज़ करण मधु माथुर जे आवाज़ सां।

घड़न के चा चवामा यजब जाब तो दिस यमान थियूं यखड़ियूं अचानक ही सौदो चुका।

ये पेशेंट खास खास खबरों नई दिल्ली ओलह एशिया में यकदम चिकताल के घटकान जो सडनो है जो भारतीय नागरिकन के खड़ंदड़ एक तजारती बेड़े ते ओमान के सामुंडी किनारे दरमियान हमलो थो है। इसरो सोभायती नमूने टे मुख्य गगनयान क्रू मॉडल टेस्ट सोभायती पूरी कई है। अमेरिका जो चवण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सभी बेड़न के लिए खुल रो ए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लाय अमरीकी फौज पूरो पूरो ध्यान रखंदी। थाईलैंड में एक वसीय बाह में जो बैंकॉक के पब में लगी तेमें 27 मू मार भारत इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपिक 2026 में 5 सोने जा बिला खटिया जैनिक सिंगर विमेंडल मेन्स सिंगल टाइटल खटी वरतो है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उलटेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चानोविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrest Suraya from Mumbai, and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea, and Taiwan among 381 students from 87 countries. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead a high-level Indian business delegation to Spain, Belgium and Finland from today till the 17th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit aims to strengthen India's economic partnerships with Europe with a focus on trade, investment, technology, innovation and sustainability. In the first leg of his tour, Mr. Goyal will visit Spain today, where he will participate in a business roundtable with the Chamber of Commerce of Spain, CEO and ICEX Spain Trade and Investment. The minister will then visit Belgium on the 14th and 15th of this month. Thereafter, Mr. Goyal will visit Finland on the 16th and 17th of this month. The monsoon session of the Chhattisgarh Legislative Assembly begins today. The session will continue till the 17th of July. A total of five sittings will be held during the session. During the session, financial business will be transacted and the state government will also introduce around eight amendment bills. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. The United States has launched a fresh round of military strikes against Iran. U.S. Central Command said that the operation is intended to further degrade Tehran's ability to target civilian mariners and commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. In a post on X, CENTCOM said the strikes were carried out on the direction of the commander-in-chief to hold Iranian forces accountable. The latest strikes come amid heightened tensions in the Gulf region. According to Iran's press TV, three explosions were heard in the southern Iranian cities of Jask, Bandar Abbas and Sirik following the U.S. strikes. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev in the final at the Old England Club London last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title.

0: and his fifth Grand Slam crown, Sinner became the 10th player to successfully defend the Wimbledon men's singles title. In the women's doubles final, 10-seeded Chinese-French pair of Gao Hanyu and Kristina Mladenovic defeated the 2nd-seeded Canadian-Brazilian duo of Gabriela Dabrowski and Lucia Stefani to clinch the title at the center court. The IMD has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days and isolated heavy falls over east Uttar Pradesh during 4 to 5 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आप प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे अक्षय कुमार नागर द्वारा गाए भजन। आपके साथ दे रहे हैं तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष।

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप आनंद उठा रहे थे अक्षय कुमार नागर द्वारा गाए भजनों का। आप किसे संगत कर रहे थे, तबले पर रितु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:33 हो चुके हैं और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे यानी आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत कार्यक्रम को एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ।

हाँ दोस्तों, आप जैसा भी कोई नहीं है और उम्मीद है कि आपकी सुबह मुस्कान, उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई होगी। या दोस्तों, हर सुबह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। कल की परेशानियां, अधूरे काम और बीती हुई बातें पीछे छूट जाती हैं। सूरज हर रोज हमें यही संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना रही हो, एक नई सुबह जरूर आती है।

दोस्तों, सुबह के पहले किरण के साथ एक नया दिन एक नए मौके के साथ और नई उम्मीदों के साथ आता है। आपका इंतजार करती है नई उम्मीदें, आपकी चाय की चुस्कियां और हमारी बातें आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाती रहती है। और इस तरीके से बनाते रहने के लिए हम टाइम टू टाइम आते भी रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी दौलत की।

आप के साथ जो हर अमीर और गरीब छोटे बड़े और हर इंसान को बराबर मिलती है और वो है वक्त। जी हाँ, वक्त, समय, टाइम। कहते हैं अगर पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर बीता हुआ एक मिनट भी कभी लौट कर आ गया हो किसी की लाइफ में, तो आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि किसी का बीता वक्त जो है वो लौट कर आया हो। तो जो वक्त है ना दोस्तों, वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। जरा सोचिए, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं लेकिन जब दिन के 24 घंटे बिना कुछ नया सीखे या किए निकल जाते हैं, तो अक्सर हमें एहसास होता है कि काश उस वक्त रहते उस काम को पूरा कर लिया जाता, काश वो वक्त वापस आ जाता।

दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पर 7:45 और पूरे 11 सेकंड आप सुन रहे हैं गीतों वाली गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज के रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता।

बात यहाँ चल रही है वक्त की। वक्त हमें रोज 24 घंटे का एक नया खाता देता है, ना इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही अगले दिन के लिए कुछ सेव कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। तो जो करना है आज करना है और जो करना है वो अभी करना है। तो आज एक छोटी सी कोशिश जरूर कीजिएगा, किसी अपने को फोन कर लीजिएगा, किसी अधूरे काम की शुरुआत को पूरा करने की तैयारी कर लीजिएगा, या फिर खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट निकालिएगा। हो सकता है यही 15 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल दे।

जी हाँ, अगर आपको भी अपनी जिंदगी संवारनी है तो बस वक्त का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती है दोस्तों, ये याद भी दिलाती है कि समय लगातार आगे बढ़ रहा है।

से धीमी चलती है, लेकिन तीनों का लक्ष्य एक ही होता है, सही समय बताना। और ये घड़ी हमें भी जो है ना सही समय बता रही है, जो कि है पूरा होने वाला है हमारे इस कार्यक्रम का।

एक पुरानी कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा तभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेहनत करते रहिए और सही समय का धैर्य से इंतजार कीजिए। जरा घड़ी को ही देख लीजिए, उसकी तीनों सुइयां अलग अलग गति से चलती हैं। सेकंड वाली तेज दौड़ती है, मिनट वाली थोड़ा धीरे चलती है और घंटे वाली

जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कोई दोस्त आपसे पहले सफल हो सकता है कोई बाद में, किसी को मंजिल जल्दी मिलती है तो किसी को थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। इसलिए अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से कीजिए और वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। और बस चलते चलते आज का एक छोटा सा विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वक्त को बदलने में वक्त लगता है, वक्त को बदलने में वक्त लगता है, इसलिए आज की गई छोटी से छोटी अच्छी शुरुआत भी कल बड़ी सफलता बन सकती है। तो दोस्तों, अपने हर पल की कद्र कीजिए क्योंकि बीता हुआ वक्त सिर्फ याद बनता है लेकिन आज का वक्त कल की कहानी लिखता है। इसी सुविचार के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं आपकी आज की ये रेडियो होस्ट एंड दोस्त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ यूं ही, अपना प्यार हम तक भेजते रहिए यूं ही, और जल्दी आपसे एक बार फिर से मिलने का वादा लिए आपसे इजाजत चाहती है आपकी ये दोस्त। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का अंतर्प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
0: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
0: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यहाँ पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृहमंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का

0: मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाकवामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। मुनीरियाला सुविंदो अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिदों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाकवामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने के 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाकवामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबीयात के 56वें बैन अलाकवामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबीयात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पहला तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कौशिक जैन, इंदौर के निरश आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिश्त गर्ग, मुंबई के सरेश सूर्या और अहमदाबाद के सरित जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलयाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है, जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के भूमि भाभा मरकज ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोनिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अलाकवामी मुकाबला और समिट भी मुनाकिद होगा। यह तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनाकिद होगी। इन बाबाकार आलमी फोरम में जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है अला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेन्द्र यादव, भूपेन्द्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनूई जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 हो चुके हैं। आप प्रस्तुत हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन का।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे कलाकार रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ द्वारा 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।
1: This is Akashwani. Time for a weekly program, Our Guest. I hand over the mic to the show host, Nitish Arora, for the same.

چشمِ موسیٰ بھی تیری شاہد ہے.

0: सुबगाही प्रोग्राम में अभी आपने हमद बारी ताला और नाते रसूल सुनी और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय हो चला है याद करने का उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है आशा पूर्णा देवी की। उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कोलकाता में हुआ था। वे बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था और तब से ही उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही। आपकी मुख्य रचनाएं प्रथम प्रतिश्रुति, आकाश माटी, प्रेमो प्रयोजन आदि हैं।

आपको टैगोर पुरस्कार, लीला पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज पुण्यतिथि है यशपाल शर्मा की। उनका जन्म 11 अगस्त 1954 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे। वे उस टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे जिसने साल 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। यशपाल शर्मा 1978 से 1985 तक भारतीय टीम के लिए खेले। उन्होंने 37 वनडे और 42 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 42 मैच की 40 पारियों में 883 रन बनाए जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 89 रहा। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में 4 अर्धशतक भी लगाए। वे 1979-1983 तक भारतीय मध्यम क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आज जयंती है बीना राय की। उनका जन्म 13 जुलाई 1932 को लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनका वास्तविक नाम कृष्णा सरीन था। उन्होंने सन 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। विवाह के बाद बीना राय ने पति के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स के बैनर में शगुफा, गोलकुंड का कैदी और समुंदर जैसी फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही पति पत्नी की इस जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया। 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी बीना राय की अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। आपकी मुख्य फिल्में काली घटा, मैरिन ड्राइव, चंद्रकांता, घूंघट, ताजमहल, अनारकली और दादी मां आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।

आज जयंती है प्रकाश मेहरा की। उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें भारतीय फिल्म जगत में मसाला फिल्मों के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से की थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देने और उनके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रकाश मेहरा का बहुत बड़ा योगदान था। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के शानदार संगीत, दमदार संवाद और बेहतरीन निर्देशन के लिए जाने जाते थे। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत और उनकी फिल्म का दमदार संवाद।

0: खाली।
1: अरे क्या करेंगे?
2: ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा ना, ये सब नकली है, असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। ये अपन के जिस्म का चमड़ी है।

0: आज जयंती है केसरबाई केड़कर की। उनका जन्म 13 जुलाई 1892 को केरी गांव तालुका पोंडा गांव गोवा में हुआ था। वह भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। आइए सुनते हैं उनका संगीत।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर होंगी।
2: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कानून मंजूर किए थे वो

रखा है, कानूनी तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कानून मंजूर किए थे वो रियासत में 8 से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कानून में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज़्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बारमांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकिद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अल-अक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के गुट की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीक कारों का पहला बैन अल-अक़वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बावकार आलमी फोरम में जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांगवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज से पहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेस वे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का 3रा इजलास एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनाकिद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमी कंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हर एक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरून मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मुकामात को शामिल किया गया है उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कायमपुर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मौजूद निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समुद्र में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है, जो अमले के तहफ्फुज़ की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आमनाए हुरमुज से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजियों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जैसा बंदरबास और

0: सीट में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अब नए हुरमुस तजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा फौजी महाज़ाराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शरीर इलाकाई और आलमी नतज के लिए खबरदार किया है। भारत ने अम्मान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया कि अम्मान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेर इलाज हैं। ये आग बार में निस शव के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शुमाली मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन मर्दों का सिंगल्स का खिताबी कामयाबी के साथ दिफा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महान रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्याल और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भी भेज सकते हैं 1-800-1178-00। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कानून मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय सैलबर ने 56वें बैन अवी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने की तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमला किए हैं और जैक सिनर ने अलेक्जेंडर जर को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अखबार जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: ये दुनिया एक कारखाने की तरह है। यहां पर हर इंसान अपनी जद्दोजहद के बकदर नफा उठाता और इज्जत और तरक्की हासिल करता है। इस दुनिया की रंगोबू, यहां के लालाजार, यहां की रौनकें और आसाइशें हर इंसान के लिए यकसां और बराबर हैं। हां, इनसे नफा वही हासिल करने का मुस्तहिक है जो अपनी जिंदगी में कोशिश और जद्दोजहद करे। काहिल और बेहिस या निकम्मे इंसान के लिए ना दुनिया में कोई हकीकी आराम और राहत है और ना इज्जत और वकार, बल्कि कामयाब इंसान वही है जो मेहनत करता और उसके लिए पहले किसी नस्बुल ऐन को मुकर्रर करता है। यह दुनिया बनाई ही उन खुशनसीब लोगों के लिए गई है जो मेहनत और जद्दोजहद से जी नहीं चुराते।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। बीना पांडे की आवाज में सुनिए मखमूर दहलवी और फिराक गोरखपुरी का कलाम, और नईम अली की आवाज में मिर्जा गालिब और अमीर मीनाई का कलाम।

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए जनाब गोपी नाथन नायर का तहरीर करता ड्रामा इम्तहान।

0: भागीरथी भागीरथी
1: जी
0: इधर आओ भाई।
1: अभी सुना आपने कट्ठे के दाम भी चढ़ गए। कल तक तो सुपारी ही 10 पैसे की एक थी, लगता है पान खाना भी कम करना पड़ेगा।
0: अरे ये बू किस चीज की आ रही है? बिना तेल के बत्ती चल रही है दिए में।
1: ओह मैंने दिया बुझाया है, उसी की बू होगी। तेल कम था इसलिए।
0: बिना तेल के बत्ती जिस घर में जलती है उस घर का भला नहीं होता।
1: वो जैसे उठी तो बत्ती बुझाना भूल गई थी।
0: यमुना तो अंदर नहीं है?
1: है, बिस्तर पर लेती है।
0: तुमने तो कहा था उसका बुखार उतर गया है, फिर
1: परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे तय हो गई थी।
0: बदहजमी हो गई होगी,
1: कौन जाने क्या हो गया।
0: सुबह तक ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर बुला लाऊंगा। अरे भाई गुमसुम क्यों खड़ी है, पानी लगा लो।
1: तुमसे ये पान की लत नहीं छूटती। सुनो जी इसे छोड़ दो। क्यों जी, आज पान में चूना ज्यादा लगा दूं? जबान जल जाएगी। और
0: अरे भाई झूठ बोलूं या औधी सीधी जबान चलाकर रोटी खाऊं तभी जबान जलेगी।
1: देखते हो और भी किसी तरह तुम्हारी जबान।
0: 40 वर्ष से तुम्हारे हाथ के लगे हुए पान खा रहा हूं और सच तो ये है तुमने लत डलवाई है। तुम टोकती तब शायद छूट जाती या कम हो जाती, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं। अब तुम्हारे हाथ के पानों से कभी जबान भी नहीं जली। आज तक तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी जिस जबान से नहीं निकला उस जबान से तुम्हें अब बहर क्यों?
1: देखो जी तुम्हारी जबान से मुझे बहर नहीं है, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई में पान पर पान खाना सुहाता नहीं। लीजिए ये पान।
0: जबान तो नहीं जलेगी, चूना।
1: ठीक है ठीक है, डरिए नहीं।
0: वाह भागीरथी तुम्हारे हाथ के पान में मजा ही कुछ और है।
1: बनाने लगे?
0: नहीं भाई सच कह रहा हूँ, ये पान जब तक हलक से नीचे नहीं उतरता दिमाग के नौकर अड़कर बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं, और जब ये नौकर काम नहीं करते तो जो आवाज ठिकाने नहीं रहे, और मैं बौखलाकर किसी बहाने से उन्हें आवाज लगाता हूँ। समझी?
1: सुनो जी ये पर्चे वर्चे अभी खत्म नहीं हुए क्या?
0: बस 100 के करीब रहे।
1: जल्दी कैसे खत्म हो, शुरू से आखिर तक चीर फाड़ तो करते हैं, आप तो कोई देर जबर तक नहीं छोड़ते।
0: भाई वाह वाह, बिना जाते ही नंबर दे दूं?
1: तो जांचने का मतलब ये थोड़ी है कि एक एक लफ्ज देखो। अरे सरसरी निगाह डाली और नंबर दिए। अगर कोई लड़का किस्मत से पास हो जाए तो आपकी निगाह में क्यों चुभे?
0: भाई अब ये तो मेरी आदत है, पूरी तरह पर्चा जांचे बिना मगर नंबर नहीं देता।
1: इसीलिए तो इतने दिन में पूरे पर्चे नहीं देख पाते। आपको तो बस बाल की खाल निकालने और हाथों के हिज्जे पकड़ने में कुछ मजा आता है।
0: ये तुमने मार्के की बात बताई, मैं सिफारिश करूंगा अगली बार के इम्तहान में तुम्हें एग्जामिनर बना दिया जाए।
1: अजी ये तो कोई हाथी बांधने जैसा मुश्किल थोड़ी है।
0: हाँ तुम तो एक ही बार में सबका बेड़ा पार कर दोगी।
1: नहीं नहीं आप कहिए कि बेड़ा डुबा दूंगी।
0: देखो तुम तो ऐसे करना, एक रस्सी बांधना, एक थरा इधर दूसरा थरा उस तरफ, और पर्चों को उसके ऊपर फेंकना, जो पर्चे इधर वो पास, जो उधर वो पे।
1: मेरा मजाक बना रहे हैं?
0: पर्चे देखना भी मजाक नहीं है, ये कढ़ी या सब्जी बनाने का काम नहीं है। समझी?
1: मैं समझती हूँ, ये तिल पपड़ी बनाने का काम है।
0: अच्छा छोड़ो इस बातों को, तुमने कहा था यमुना को कह हो गई थी इसलिए वो बिस्तर पर। बात ये इन पर्चों में जो नंबर मैंने दिए हैं इनकी दोबारा जांच करनी है। कल परसों यमुना ये काम कर रही थी, फिर मैं पूछना चाहता था कि आरजी तौर पर यमुना की जगह तुम ये पर्चे।
1: तो ठीक है जी, लेकिन रात के खाने के लिए कांगी कटहल का भुट्टा और चटनी तैयार करनी है कि नहीं? बाबरची खाने में जाओ, जब भी तो वक्त पर आपको खाना मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा तो जाइए, आप स्टीव ले जाइए बाबरची खाने में, हमारा वक्त खराब न कीजिए।
1: लीजिए मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये न सोचिए कि बला टल गई।
0: क्या मतलब?
1: बाहर आपसे कोई मिलने आया मालूम होता है।
0: कौन है शाम के वक्त?
1: बाहर जाकर देखिए ना।
0: नहीं नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम उसे यही भेज दो।
1: यहाँ ये डांट के पर्चे?
0: अरे तो क्या हुआ,
1: लेकिन छुपा के रखने की चीज है ना।
0: हाँ हाँ,
1: अगर वो अजनबी नंबर देख ले तो
0: क्या होगा? देख ले, तुम मुझे यही भेज दो।
1: अच्छा
2: जी, मेरे नीलकंठ।
1: ओह अच्छा अच्छा, आइए इधर आइए।
0: आपकी तारीफ जी नहीं, लकड़ी काटते हो तो क्या मकाऊ के
2: जलिया? वही वही।
0: ओ तब तो आप नीलकंठ पिल्ले हैं। अरे भाई, ये क्या पहनावा है? आप तो पहचाने नहीं जा रहे, आपकी हालत कैसे हुई?
2: क्या बताऊं मास्टर साहब, हमारा सब किया कराया मलिया लेट हो गया।
0: मैं तो आपको देखकर पहचान ही नहीं पाया। अरे बैठो ना।
2: जी नहीं, मैं खड़ा ही रहूंगा मास्टर जी, आपके बराबर बैठने की मेरी हैसियत का।
0: तो मैंने कहा बैठ जाओ नीलकंठ
2: जी। अच्छा अच्छा मास्टर जी,
0: कहता है आपके बराबर बैठने की मेरी हैसियत कहाँ है। अरे नीलकंठ, मुझमें भी अब क्या है, रिटायर हो चुका हूँ। अरे इस टोकरे में क्या लाए हो?
2: जी जब घर से निकला तो माँ ने कहा बेटा आम के पेड़ से 5-7 पके हुए आम तोड़कर ले जा।
0: बड़ी खुशी की बात है। माता जी कैसे हैं?
2: जी बस सांस ले रही हैं। हड्डियों का पिंजर रह गया है मास्टर जी, उनका जिस्म धागे

0: तलाक हो गया है। बड़ी मुश्किल से दिन काट रही है बेचारी।
1: उसे भले 12-15 बरस हो गए
0: जी,
1: मुझे अच्छी तरह याद है। क्रिकेट में मैं सरकारी मुलाजिम था, तब मैंने उनसे ही प्यार पाया था। वो प्यार से खिलाना पिलाना, यहां तक कि मुझे अपनी माँ का दुलार याद आ जाता था। माता जी जानती हैं मैं आम का रसिया हूँ। ये आम, वही खुशबू, वही भागीरथी
2: जी,
1: जानती हूँ ये कौन है
2: जी? पहचान गई थी। आप अपने भांजे विजय के पास ठहरे हैं
0: जी? हाँ, वही ठहरूंगा मैं। अभी भी क्री कार्ड से ही तो चला आया हूँ, सोचा पहले आप लोगों से मिल लूँ फिर वहां चला जाऊँ।
1: हाँ विजय, हाँ बराबर आता जाता है। भागीरथी, तुमने इन्हें आता ही पहचान लिया था या?
2: पहचान लिया था हाँ, वो फुर्तीला बदन और हंसमुख चेहरा तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी
0: बहन जी गया वक्त फिर नहीं आता था। सब बात पुरानी हो गई। आपकी छोटी लड़की का जन्म क्रिकेट में ही हुआ था।
2: हाँ हाँ,
0: उस वक्त दाई को यही नीलकंठ दौड़ कर लाया था। आप कैसे मुझे भूल सकते?
2: याद है तब गाड़ी वान के न मिलने पर तुम दाई को गाड़ी में बिठाकर खुद हाँक लाए थे।
0: कोच की गाड़ी थी, बैंक भी तो हाशा बात नहीं।
1: तुम्हें तो सारी बातें 16 आने याद है नीलकंठ।
2: हमारा घर बड़ी मुश्किल से मिला होगा आपको
0: जी। वो चौराहा है ना, वहाँ एक दर्जी से पूछ लिया, उसने बता दिया। उसने ये भी कहा कि फाटक पर त्रिवेणी नाम लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे जाए।
2: अच्छा,
0: तो क्या यही मास्टर जी इस घर का नाम है ना?
1: हाँ, इस घर का यही नाम है, यानी वो जगह जहाँ 3 नदियां मिलती हैं।
0: जी
1: मेरे देवी जी भागीरथी, बड़ी लड़की सरस्वती, छोटी यमुना, तीनों को मिलाकर ये जगह त्रिवेणी बन गई।
0: क्यों, ठीक है ना?
1: ठीक है मास्टर जी,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: अरे तुम वैसे ही खड़ी हो, नीलकंठ पीने के लिए गरम गरम चाय तो लाओ भाई।
2: हाँ हाँ।
1: और सुनो, ये आम अंदर ले जाओ तराश के लिए।
2: जी अच्छा, अभी ले।
1: हाँ भाई नीलकंठ, और क्या खबर है? काम काज कैसा चल रहा है? तुमने तो कोई शायद कारोबार कर लिया था ना?
0: जी हाँ, मगर मास्टर जी वो कारोबार ठप हो गया।
1: ओहो,
0: कुछ माल जायदाद मिलनी थी, उसके लिए अदालत में जाना पड़ा।
1: अच्छा,
0: अपने पास जितना था सब मट्टी में मिल गया।
1: ओहो,
0: हक की जायदाद भी ना मिली मास्टर जी, और मेरे पास जो कुछ था सब लुट गया। मास्टर जी अब तो हर तरफ बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, बस यही कुछ चल रहा है। कहते हैं सांझ को आंच नहीं, मेरे मास्टर जी अब आज होने लगी। मास्टर जी एक आदमी को मैंने 11,000 रुपए दिए।
1: अच्छा,
0: वो साफ मुकर गया, कहता है लिखा सबूत है तुम्हारे पास?
1: अरे
0: मास्टर साहब, मैं इसी तरह की बातों का मारा हुआ हूँ।
1: हो, मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं चला। हाँ विजय कभी किसी जायदाद के झगड़े का जिक्र तो कर रहा था।
0: जी विजय मेरा भांजा है, उसे मुझसे इतना प्यार है मास्टर जी कि क्या बताऊं। किसी मामा को अगर भांजा मिले तो बस ऐसा।
1: मैं जानता हूँ विजय तुम्हें बेहद प्यार करता है।
0: मुझे जी उससे बेहद लगाव है। एक बार मास्टर जी वो बहुत बीमार पड़ा, जब वो मौत के मुंह में था, बेहोश था, लोगों ने तो उसे मुर्दा समझकर उसे, लेकिन मास्टर जी मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं हुआ। मैं रात भर बैठकर उसकी ईमानदारी करता रहा और वो जी गया। उसी दिन से मास्टर जी ने मेरा एहसान।
1: अरे एहसान ही क्या, हम तो एक हद तक वो तुम लोगों की मदद भी कर सकता है।
0: मदद की हमें फिक्र नहीं, आज दुनिया में जिस बेलौस प्यार का नामो निशान मिट रहा है मास्टर जी, वो मिल जाए यही बहुत है।
1: हाँ, हर जब बेलौस मोहब्बत गायब से हो गए हैं।
0: विजय मेरे बेटे को अपने यहां ले आया, उसका खर्च उठा रहा है जो शायद अब मैं नहीं उठा सकता। हाँ, अब नहीं उठा सकता।
1: कितने बच्चे हैं तुम्हारे नीलकंठ?
0: मेरा एक यही लड़का है मास्टर जी, वो जन्मे की बस यही लाठी है। उसकी मां भगवान को प्यारी हो गई, उधर गरीबी ने निधान कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने घर का सामान बेचकर इस लड़के को स्कूल फाइनल तक पढ़ाया। लेकिन मेरी किस्मत के उपास ना हो सका, मेरी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे लिए नामुमकिन था। जैन ये समझा और उसे यहाँ लिया
1: और यहाँ लाकर उसे कॉलेज में दाखिल करवा दिया।
0: कॉलेज में वो कैसे दाखिल हो सकता था डॉक्टर साहब?
1: क्या यहाँ कर भी?
0: जी इस साल उसने इम्तहान दिया है।
1: ओ, अच्छा अच्छा ये बात है। विजय ने कोई जिक्र नहीं किया, वो तो कल भी यहाँ आया था।
0: वो कैसे जिक्र करता मास्टर साहब? मेरे लिए शर्म की बात है। बात ये कि मेरे लड़के ने मुझे लिखा, सब मजामीन में पास हो गया हूँ, मास्टर जी के सब्जेक्ट में पास हो जाऊं तो इस बार मैं पास हो जाऊंगा, इसलिए पिताजी को यहां तक आना ही होगा। और मास्टर साहब मुझे आना ही पड़ा।
1: हर पिता को ऐसा खत पढ़कर आना ही पड़ता है।
0: मुझे ही माफ कर दीजिएगा मास्टर जी।
1: अरे आपने आकर कोई गलती नहीं की भाई। लड़के का रोल नंबर क्या है?
0: जी वो देखिए इस पर्ची पे लिखा हुआ है।
1: हाँ
0: इस नंबर के इंसान की कापियां आपके पास ही है ना मास्टर जी?
1: हाँ, वो तो इसी पुलंदे में है।
0: आपने शायद जांच ही नहीं होगी।
1: अभी पूरी जांच नहीं कर पाया हूँ लेकिन नंबर दे चुका हूँ।
0: तो कितने नंबर पाए हैं उसने?
1: भाई यह याद नहीं
0: लेकिन मास्टर जी वो
1: आयलकंठ पिल्ले अपने बच्चे के नंबर जानना चाहता है। ये बुरी बात नहीं है लेकिन
0: लेकिन मास्टर जी
1: देखो नीलकंठ
0: जी,
1: ये नंबर जानने के बाद इस मौजू पर और बात नहीं होगी।
0: जी
1: जो मैं कर सकता था वो मैंने ईमानदारी से कर दिया है।
0: मास्टर जी नंबर मालूम हो जाए बस यही बहुत है।
1: मेरी बात तुमने समझ ली ना? इस मौजू पर और बात नहीं होगी फिर।
0: जी जी हाँ मास्टर जी वादा रहा।
1: हाँ ये रहा वो पुलंदा। हाँ ये 62 नंबर मिले हैं।
0: तो हे भगवान वो पास हो गया। मास्टर साहब आपने जान बचा ली।
1: अरे भाई तुम तो बड़े कमजोर दिल के आदमी हो।
0: पास कर लिया
1: बच्चा खोलते हुए सोचा था भगवान करे वो पास हो जाए।
0: लेकिन क्या
1: इतने नंबर उसे कैसे मिल गए? मैंने तो किसी भी लड़के को 55 से ज्यादा नंबर नहीं दिए। फिर ये मैं दोबारा जोड़ता हूं
0: मास्टर साहब। अच्छी बार उसने बहुत मेहनत की।
1: चुप रहिए जरा
0: मास्टर जी, भगवान बड़े मेहरबान हैं। अभी
1: मैंने आपके लड़के को तो 26 नंबर मिले हैं।
0: क्या मास्टर साहब?
1: हाँ 26 नंबर ही मिले हैं तुम्हारे लड़के को। 26 को शायद उल्टा लिख दिया है वो।
0: जी
1: वो 62 बन गए।
0: इसका मतलब मास्टर जी मेरा बेटा फिर फेल हो गया।
1: हाँ यही सोचना चाहिए।
0: इस बार भी हो
1: नीलकंठ बैठ जाओ। बैठ जाओ नीलकंठ।
0: बैठ कर क्या करूंगा मास्टर जी, सब कह चुका सब कुछ।
1: तो नीलकंठ बैठो, वो चाय ला रही है।
0: चाय वो हालत से कैसे उतरेगी?
1: नीलकंठ
0: मास्टर जी मैं वादा कर चुका हूं आपसे कि इस बारे में आपसे कुछ ना कहूंगा। लेकिन मास्टर जी अगर आप चाहें तो घर की इज्जत और मेरी जान बचा दीजिए।
1: नीलकंठ
0: मेरी जान बचा दीजिए मास्टर जी, मेरी जान बचा दीजिए।
1: चला गया। यमुना, ओ यमुना।
3: जी जी बाबू जी।
1: इन नंबरों का टोटल तूने किया था?
3: टोटल तो ठीक है बाबू जी, लेकिन पहले पन्ने पर कुल नंबर
1: गलत हो गए। तेरी इस तरह से भूल ने उस गरीब के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
3: ये लीजिए चाय और ये आम। अरे मोटर चले गए?
1: चला गया।
3: आम तो बहुत मीठे हैं, यहाँ तो देखने को भी ना मिले। आप खाइए ना आम।

0: अपू, अरे अपू, अरे आज फुटबॉल का मैच देखने क्यों नहीं आया?
1: अरे नंदन तू, अरे हाँ आज तो सेमीफाइनल था, मुकाबला जोर का था ना?
0: अरे कमाल का मुकाबला हुआ।
1: कौन जीता?
0: लकी स्टार बाजी ले गई, उसने 3 गोल से ट्रांसपोर्ट को हराया।
1: 3 गोल? अव्वल दर्जे की टीम
0: और 3 गोल से हारी। हमने तो जिंदगी में ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा।
1: तो लकी स्टार फाइनल में आ गया, अब खेल कब होगा? कल?
0: कल नहीं, परसों फाइनल होगा, चलेगा ना?
1: मैं शायद ना चल सकूं।
0: क्यों, क्या बात?
1: आज शायद बाबूजी आ जाए, मेरा तो जी घबरा रहा है।
0: अरे इम्तिहान का नतीजा तुझे मालूम नहीं हुआ, इसीलिए तेरा जी घबरा रहा है।
1: तीसरी बार ये इम्तिहान दिया है, अगर इस बार भी रह गया तो बाबूजी मुझे जान से मार देंगे।
0: अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, खेल पास तो होते ही रहते हैं।
1: तू पास हो गया है ना, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। मैं नहीं पास हो गया।
0: तू तो डरपोक बंदर है अप्पू, सारी तरकीबें तुझे बता दी थी लेकिन फिर भी
1: मेरे तो हिम्मत नहीं हुई नकल वकल की। ख्याल आया अगर पकड़ा गया तो?
0: हमारी तरकीब से नकल करता तो कैसे पकड़ा जाता? आखिर हमने भी तो
1: मैंने कोशिश की थी, लेकिन मास्टर साहब जब पास आए तो मैं कांप गया और जो मुझे आता था वही किया।
0: देख मैं तो लुगत के बराबर की किताब जांघों में रखकर नकल कर सकता हूँ।
1: पक्का हौसला होना चाहिए ना।
0: अरे इस बार नकल करने का नया तरीका निकाला था हमने।
1: क्या?
0: अरे फिल्म के रोल में मोटे कागज पर नकल करने की पर्ची बनाकर लपेटी, देखने में एक रोल फिल्म का सा दिखाई देता था। कोई पास आया तो कागज का रोल एकदम छोड़ दिया, कागज अपने ठिकाने पर पहुंचा, अरे नहीं आया तो डट के नकल की। पिछले इम्तिहान में इसी तरीके को आजमाया था
1: और तू पास हो गया
0: फर्स्ट क्लास नंबर लेकर, वरना ये फार्मूले कायदे गर्दाने ये याद करते करते पागल ना हो जाता।
1: तू बहुत समझदार है, मैं ही बेवकूफ हूँ, क्या करूँ।
0: तू इस बार निकल जाएगा ये नहीं ये बता,
1: जिन पर्चों का पता लगा है उनमें तो पास हो गए हूँ।
0: अगर किसी पर्चे में खटका हो तो 1000 रूपये में पास कराने का जिम्मा मेरा।
1: ऐसे भी तो एग्जामिनर होते हैं जो रिश्वत नहीं लेते।
0: अरे हो सकता है, लेकिन रिश्वत लेने वाले टेबुलेशन क्लर्क तो बहुत होते हैं और लिस्ट आखिर इन्हीं के पास होती है। टेबुलेट करने के बाद जितने नंबरों की जरूरत होती है सौदा हो जाता है।
1: लेकिन सब ऐसे नहीं होते।
0: अरे तू सारा मामला मुझ पर छोड़ दे, बस 1000 रूपये तैयार कर ले।
1: काश मुझे ये बातें पहले पता हो जाती तो।
0: तू एकदम बुद्धू है, एकदम बुद्धू। तेरे विजय भाई आ रहे हैं, मैं चला। याद रखना परसों फाइनल है। फाइनल
1: ठीक है।
2: अप्पू, अप्पू,
1: अप्पू कौन था ये?
2: वो भैया नंदन।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वो फुटबॉल का पागल।
2: अप्पू तुम्हारे बाबूजी अभी नहीं आए?
1: नहीं भैया अभी नहीं आए।
2: मैं तो समझा था शायद आ गए होंगे, इसीलिए तो क्लब से भागा भागा आया। वैसे उनके आने का वक्त तो हो गया है।
1: हाँ भैया वक्त तो हो गया है,
2: उन्होंने लिखा तो यही था,
1: रास्ता ना भूल गया भैया।
2: अप्पू हमें बस अड्डे पर जाना चाहिए था।
1: क्यों भैया, मैं बस अड्डे जाऊं?
2: नहीं नहीं, शायद बस देर से आए। लेकिन अप्पू वो रास्ता नहीं भूल सकते। और सुनो ये सिगरेट का टिन हटाओ, नौकर से कहो मामा जी के लिए नहाने का पानी रख दे, बिस्तर लगा दे और खाने का इंतजाम कर दे। मैं नहाने जा रहा हूँ।
1: अच्छा भैया।
0: शेटी, शेटी
3: जी भैया,
1: बाबूजी के लिए नहाने का पानी रख दो, बिस्तर लगा दो और खाने का इंतजाम दे।
3: सब ठीक है भैया। लो तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं, हम चले।
1: बाबूजी, बाबूजी अभी आप ही की बात। क्या बात है बाबूजी, आप रास्ता भूल गए थे क्या?
3: कौन रास्ता भूल गया?
1: मैं?
3: चुप रह जा, चुप रह तू।
1: बाबूजी
3: खामोश हो जा, मैं तेरी आवाज नहीं सुनना चाहता, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, भाग जा यहां से। मैं कहता हूं दूर हो जा।
1: बाबूजी
3: विजय, विजय इस निकम्मे को मेरे सामने से हटा दे, वरना मैं
1: बाबूजी मेरा कसूर?
3: कसूर के बच्चे, मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा गला घोट दूंगा।
1: अब तुम अंदर चले जाओ।
3: जी अब जी बेटा, इस निकम्मे को खिलाने पिलाने से कोई फायदा नहीं, मैं कहता हूँ निकाल दे इसे घर से।
1: बाबा जी आप बैठिए तो सही।
3: बैठने से कोई फायदा नहीं बेटा, अब तो मैं गांव चला जाऊं।
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा जी,
3: जिस घर में

0: तुम इसे यहाँ लाए, ये फिर फेल हो गया।
1: मामा जी अब तू इस बार जरूर पास होगा।
0: नहीं बेटा नहीं, बिना पढ़े लिखे कोई पास नहीं हुआ करता।
1: मास्टर जनार्दन पिल्ले के पर्चे को छोड़कर वो सब में पास है।
0: एक पर्चे में फेल हो गया तो
1: आप यकीन कीजिए मामा जी वो जरूर पास होगा, मास्टर जनार्दन पिल्ले के पर्चे में भी।
0: नहीं बेटा नहीं, उस पर्चे में इसे सिर्फ 26 नंबर मिले।
1: यूं कहिए मामा जी के मिले थे, अब वो ज्यादा हो गए हैं।
0: नहीं नहीं बेटा नहीं, ये गलत है। मैं गरीब हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। मैंने मास्टर साहब से सब कुछ कहा, उनकी मिन्नत की, लेकिन उन्होंने मुझे साफ कह दिया मेरा बेटा फेल हो गया।
1: क्या क्या आप वहां गए थे?
0: हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ।
1: आपको वहां नहीं जाना चाहिए था मामा जी।
0: क्या
1: शायद हमें पता नहीं चला है, लेकिन मैंने ही उस पेपर पर नंबर लिखे थे।
0: क्या कहते हो तुम? तुम भी नंबर लिखे?
1: जी आपको साफ साफ बताता हूँ मामा जी, मास्टर जनार्दन पिल्ले की छोटी लड़की यमुना मेरी मंगेतर है।
0: क्या मतलब? लेकिन लेकिन बेटा उन्होंने तो ये बात मुझसे नहीं कही।
1: आप तो उन्हें जानते ही है मामा जी, कुंडली दिखाए बिना वो आपसे कुछ कहने ही नहीं चाहते होंगे। आप बेफिक्र रहें, मैंने अप्पू को पास कराने का बेड़ा उठाया है तो वो जरूर पास होगा।
0: पास होगा? लेकिन लेकिन बेटा वो मास्टर साहब अपना फैसला।
1: मामा जी आप भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा।
2: बाबू जी कॉफी?
1: मामा जी कॉफी लीजिए ना।
2: कॉफी? बाबू जी

0: आई हूँ।
1: क्यों? मैं समझा नहीं बेटी।
0: मेरे पति का एक आला अफसर है बाबूजी, उसके लड़के को नंबर ज्यादा देने हैं, सिफारिश लेकर आई हूँ। बाबूजी, इन्होंने अपने अफसर से वादा कर रखा है।
1: और वादा टूट गया तो अफसर खफा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। अरे पगली, ऐसी नौकरी को तो दूर से ही नमस्ते करना चाहिए।
0: लेकिन बाबूजी,
1: कोई चार पांच हिम्मत वाले सामने डट जाएं और मुखालिफत करें तो कितना अच्छा हो।
0: मुखालिफत से क्या फायदा?
1: फायदा तो ऐसा हो कि अफसर भी जान जाए।
0: ये ऐसे माहौल में पले हैं जहाँ चीनी सीमेंट के परमिट दिलाने पर भी वो।
1: ससुर, तू मेरी बेटी है, तुझे अपनी आदतें नहीं बदलनी चाहिए और उसकी आदत भी सुधारनी चाहिए।
0: मैंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई।
1: यानी तू हार गई और वो जीत गया।
0: बाबूजी,
1: मैं ऐसा ही कहूंगा बेटी, अगर तू उसे शुरू से संभाल कर रखती तो शायद वो बच जाता।
0: तो मुझे यहाँ आकर रहना पड़ता?
1: जब उसे होश आता तो वो तुझे पालकी में बिठा कर ले जाता।
0: बाबूजी, तो क्या ये मेरी गलती है?
1: हाँ बेटा, तेरा बाप तो तुझे ही कह सकता है। खैर, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई बेटी, तू उसे संभाल सकती है। पहले वो मुंह बिगाड़ेगा, डांटेगा और तू हिम्मत नहीं हारेगी तो वो सुधर जाएगा। बेटी, पैसे का लालच बड़ी बुरी बीमारी है, इंसान मगरूर हो जाता है। तू मुझे यकीन दिला बेटी कि चोर बाजारी का पैसा तू नहीं लेगी, छुएगी भी नहीं। हो सकता है पहले तुझे दुख हो मगर बाद में सुकून मिलेगा, सुकून। तू मेरी आंखों की तरफ देख बेटी, तू मेरी बात का इम्तिहान लेगी? बोल, लेगी इम्तिहान? बोल बेटी, लेगी इम्तिहान?
0: हाँ हाँ बाबूजी, मैं इम्तिहान लूंगी।
1: तो मैं यकीन करूं?
0: हाँ बाबूजी, आप ही तो मेरे आदर्श हैं, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ?
1: बेटी, तो घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटी, मैं कह रहा हूँ। मैं
2: तुमने बात की सरस्वती?
0: हाँ माँ।
1: हाँ, सब बात हुई।
0: ये लो चाबी।
1: कैसी चाबी?
2: अपने कमरे की। कमरा खुला छोड़कर जाना ठीक नहीं, इम्तिहान के पर्चे।
1: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
3: मोटर आ गई है बिटिया।
1: किसे लेने आई मोटर?
0: मुझे जाना है बाबूजी, ये आए हैं क्या?
3: हाँ हाँ, मोटर में बैठे बिटिया।
0: अच्छा, मैं अभी आई।
1: क्यों बेटी, तहसीलदार साहब यहाँ अंदर क्यों नहीं आए?
0: मुझे क्या पता।
1: अच्छा अच्छा, मैं ही उनके पास चलता हूँ।
2: यमुना, यमुना।
4: क्या माँ?
2: हम मंदिर जा रहे हैं बेटी, अभी आ जाएंगे। तुम आराम करना, टहलना नहीं।
0: यमुना, मैं कल आऊंगी।
4: ठीक है।

अभी आप सुन रहे थे जनाब गोपीनाथन नायर का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान था इम्तिहान। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

प्रिया घोषाल की आवाज में ये नगमा अभी आपने एक्शन रिप्ले फिल्म से सुना। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश परदेस फिल्म का नगमा, आवाज है कुमार सानू की।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
1: नमस्कार शिल्पा जी और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
0: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
1: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत जरूरी है। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं, अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो

0: एम्फिसिमा में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरे तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया एक अलग तरीके का एनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो आरबीसीज बन रहे होते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से जो आरबीसीज होते हैं वो आमतौर पर 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ आरबीसी बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग जो क्लासीफाई करते हैं वो हिमोल्टिक अनिमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है, जो आरबीसी बन रहे हैं, वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूंगा।
1: तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है?
0: देखिए, ये बीमारी जो है ये जैसा मैंने बताया ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है। ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी। और एक एक कारण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत पर माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीजें होती है कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं। तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि आरबीसी के कारण बनाती हैं, वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेट बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये जरूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त है थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
1: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो क्या हम कैसे डायग्नोज करें, मतलब क्या कुछ लक्षण है कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
0: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा तो ये बहुत जरूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में आरबीसी जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो है डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में आरबीसी बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है। और क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नहीं कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत तो महसूस होगी, ये 6-8-9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमजोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में। तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी, बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से, क्योंकि खून उसका कम है। क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा। 6-8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका। तो ये बहुत जरूरी है। और कई बच्चे, जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे कि थैलेसीमिया हो सकता है, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है। इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना जरूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
0: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है, क्योंकि जीन्स जो है ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फर्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फर्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। जो अगर एडोलिसेंट है या बड़े लोग हैं, उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या जरूरत से ज्यादा, रोजमर्रा की दिनचर्या से ज्यादा जो काम करते हैं उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।

0: डॉक्टर साहब एक मैसेज हमारे पास लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाए।
1: देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन्स जो माँ बाप में है उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ एक चीज है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी, लेकिन जब तक नहीं ये संभव है तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जांच करा सकते हैं, अपनी खुद की जांच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्म पत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर है, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर है हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंट्रिसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीजें हैं जो आपको पता चल सकती हैं और आप उस हिसाब से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है।
0: हमारे साथ लाइन पर
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघु सिंह बोल रहे हैं मैडम
0: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना है। डॉक्टर साहब
1: नमस्कार, रघु सिंह जी बताइए।
2: जैसे मतलब कोई आदमी है जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम बढ़ा सकते हैं खून को? नहीं है तो
1: अंग्रेज
2: दवाई कोई बताइए सर।
1: देखिए जो आप कह रहे हैं कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है। तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है, तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे एक थैलेसीमिया है तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा कि आप आयरन लीजिए या अलग चीजें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से या किसी को पाइल्स होती है या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार, सेब, केला, ये सब फल ले सकते हैं, गुड़, चना। डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीजें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया या आयरन के सेब, सन, अनार, ये सब चीजें लीजिए, तो खून में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
0: डॉक्टर साहब जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाईचांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस है, या उसको बच्चे को आगे ना हो तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
1: हाँ देखिए ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर है, तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जो 25 से 50% हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया माइनर है। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है, बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा जरूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जैसा आपने कहा शिल्पा जी की, अगर नहीं है बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है और थैलेसीमिया आप बच्चे को है, तो फिर इनका क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है, तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत रहती है और फिर समय समय पे

0: जिंदगी भर चलाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है, क्योंकि खून जो है आदमी का ही चलता है और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतजाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को तो जेनेटिक है तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है, बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है?
0: देखिए, जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक हीमोग्लोबिन F होता है, तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो A में चेंज हो जाता है और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो जैसे मैंने बताया जो अपना हीमोग्लोबिन बताया वो 3 से 4 महीने रहता है, तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 9 महीने पे आमतौर पे अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में बच्चों में नहीं बन रहा है, जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6 से 9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये 1-1.5 साल की उम्र पे भी पता चल सकता है कि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं। हालांकि साधारण CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, हीमोग्राम होता है, जो कि कॉमनली एनीमिया के लिए कराया जाता है या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफी हद तक हो जाता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं। तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कंफर्म कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीजों के साथ थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
0: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफी सफल है। पिछले मैं कहूंगा 20-25-30 साल में काफी उपलब्धियां रही हैं और काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी चीज है कि ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही रेडक्रॉस जो है वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेडक्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से मरीजों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं और ये मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफी जो है मदद करते रहते हैं और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
1: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सके वो?
0: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज्यादा मरीज जो है वयस्क मरीज, बच्चे तो हैं ही इतने, 300-350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज्यादा मरीज जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरिया से, दूर दराज के एरिया से हमारे पास आते हैं और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रेडक्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफी रहती है और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी, तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आए तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी हमारे लेडी हार्डिंग में, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका, कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी, ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा।

0: सारी सुविधाएं और जितनी जांच होती हैं, तो ये गरबा जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे, तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
1: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं, जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
0: देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष रूप से आएगा, ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहे, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन जिंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, जिंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि इन्हें कोई दिक्कत है। तो 50 साल 60 साल पे कभी जांच कराई आपने तब आपको हो सकता है पता चले, और अगर आपने नजरअंदाज कर लिया तो भी हो सकता है कि आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन ये है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
1: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
0: देखिए, ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूंगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30-40-50 साल की उम्र तक कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, उसके बाद कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सांस फूलना या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को, जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं, मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई, इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या उस पर भी इफेक्ट आता है?
0: देखिए, अगर इनका हर मरीज का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसका अपना एक कितने दिन में आरबीसी जो है, रेड सेल्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, वो एक बन जाता है 10 दिन पे 15 दिन पे 20 दिन पे, तो उसपे अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे, आमतौर पे 12 से 16 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे, और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियां इनकी नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज करके, तो ये चीज तो दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है, तो ये सारी चीजें अपनी सुचारू रूप से अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज का है नियमित रूप से मिलता रहता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है, तो ये बच्चे हालांकि अब तो बड़े हो गए और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो है अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, आते हैं अपना करते हैं और खून चढ़वा के अपनी जिंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का, ये लिखते हैं सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में?
0: देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो, मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है, मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने की अपनी विधि है, एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, एचएलए की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है, इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रेसिपिएंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे जैसा आपने पूछा है, तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफी ज्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो

0: लुकेमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है। मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा?
1: देखिए, अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है, कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज को देखनी पड़ेंगी, क्या परेशानियां हो रही है। तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे जरूर पूछें और अब वो आपको जरूर राय देंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चीजों पर डिपेंड करेगा। खर्चा तो एक चीज है, लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है, तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले जरूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइज नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले तो मैं एडवाइज करूंगा कि आपको एक बार इसका सोच लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से जरूर परामर्श करें और वो आपको इस पर गाइड कर देंगे।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा था, ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है?
1: देखिए, बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पे कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में, क्योंकि हर 3 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर 2 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं, जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज को मिल रहे होते हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हफ्ते से हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएं होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, और इसलिए हमें मरीजों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना, वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, आप कहेंगे तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, मैं HPLC रिपोर्ट शोज आरबीसी काउंट 3.8 HB इज 8.4, इट इज थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
1: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या कुछ आपने पार्टली बोली, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराया एक बार देखना पड़ेगा। उसमें HPLC रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन A2F ये सब चीजें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है। तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना HPLC कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और आरबीसी की रिपोर्ट और HPLC की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे जरूर एक बार राय लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें HPLC में मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे। तो
0: इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे PRBC का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
1: मैं मानता हूं कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर थैलेसीमिया रोगियों में, देखिए, हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए। तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8.5 के आसपास आ रहा है तो जरूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्यूएट

अनोखी अदा फिल्म कनौमा भी आपने सुना शमशाद बेगम और मुकेश की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और तलत महमूद को सुनिए, फिल्म है अजीब लड़की।

0: बर्निंग ट्रेन फिल्म का नगमा भी आपने सुना। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है कीर्ति मंदिर।
1: कीर्ति मंदिर एक खुशगवार और काबिल एहतराम मुकाम जो कि बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी की जाय पैदाइश है। गांधी जी 2 अक्टूबर को यहां पैदा हुए। ये वसी और अरीज मकान जिसे हवेली कहना ही मुनासिब होगा, गांधी जी की रिहायशगाह रही है। हिंदुस्तान की आजादी में जब महात्मा गांधी गामजन थे और उनकी मकबूलियत उरूज पर पहुंच गई, इस वक्त गांधी जी वालिद करमचंद गांधी, चचा तुलसीदास और दादा उत्तम चंद का परिवार इस हवेली में रहा करता था। इस दौर में जेठवा राजपूतों की पोरबंदर में हुकूमत थी। महात्मा गांधी के वालिद और खानदान के दूसरे फर्द दीवान के ओहदे पर फाइज थे। ये 3 मंजिला मकान यानी कीर्ति भवन गांधी जी के परदादा हरिजीवन राय दास ने 200 साल कबल 17वीं सदी में किसी मुकामी औरत से खरीदा था और 3री मंजिल उन्होंने खुद तामीर कराई थी। 1944 में आगा खां पैलेस में नजरबंदी से रिहाई के बाद पोरबंदर के मुकामी लोगों के फैसले से इस मकान को यादगार की शक्ल में तब्दील करना तय किया गया। इस मंसूबे को पाए तकमील तक लाने में पोरबंदर के महाराजा महाराणा नटवर सिंह जी की कोशिश रही। इस मंसूबे के तहत मशहूर राज रतन श्री लालजी भाई कालिदास मेहता और उनकी अहलिया संतोख बेन महता की दिलचस्पी भी शामिल थी। कीर्ति मंदिर का संगे बुनियाद रखने से पहले तमाम कानूनी कार्रवाइयां कर ली गईं। इस मकान में रहने वाले महात्मा गांधी जी के रिश्तेदारों से इसे खरीद लिया गया। महात्मा गांधी जी खुद अपने हिस्से में आने वाले आराजी को अपनी तहरीर में रजिस्ट्री पेपर पर दस्तखत किए थे, जो आज भी मेमोरियल के म्यूजियम में महफूज है। कीर्ति मंदिर के बनने की शुरुआत यूं तो दरबार गोपाल दास देसाई ने की थी, लेकिन इसको पाए तकमील तक पहुंचाया मशहूर सनतकार नानजी भाई कालिदास ने। और यही नहीं बल्कि मकान की खरीद में जो मजीद रुपयों की जरूरत थी वो भी अपने पास से वक्फ कर दिए। ये मेमोरियल 1950 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन गांधी जी इसे देखने के लिए हयात न थे। मेमोरियल को कीर्ति मंदिर नाम दिया गया। 27 मई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बदस्त इसका इफ्तिताह हुआ। बाद में इस मेमोरियल के रखरखाव के लिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया। कीर्ति मंदिर की बुलंदी 89 फीट है, जो महात्मा गांधी की तवील 79 साल जिंदगी का मजहर है। कीर्ति मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मजहबी इत्तेहाद और एकता की नुमाइंदगी करता है। 6 मजाहिब हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, चर्च और मस्जिद की अलामतों को इसके फन तामीर में शामिल किया गया है। इस तरह से महात्मा गांधी के सारे मजहबों को यकसा एहतराम करने की फिक्र और फलसफे को शामिल किया गया है। इमारत के नक्शे और डिजाइन की जिम्मेदारियों को पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री ने बखूबी निभाया है। मेमोरियल में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की आदमकद तस्वीरें लगाई गई हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनको भगवान की तरह देखा जाए, इसलिए इन तस्वीरों पर फूलों का हार नहीं डाला गया है। सच्चाई और अदम तशद्दुद की उनकी फिक्र को उनके कदमों में तहरीर किया गया है। इमारत के अंदरूनी 2 कमरों को उनके हम कदम और हम ख्याल मदन लाल गांधी और महादेव देसाई को वक्फ कर दिया गया है। 3 कमरों में खादी भंडार, हैंडलूम से वाबस्ता चीजें और किताबों की एक दुकान है। मेमोरियल का दफ्तर और कस्तूरबा महिला लाइब्रेरी भी इस इमारत में वाक़े है। सयाहों के लिए कीर्ति मंदिर जियारत और अकीदत का मुकाम है। बड़ी तादाद में सयाह इसको देखने के लिए आते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में। आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
1: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन तीन देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप पर बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6 से 8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो तीन देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहां से शुरुआत करते हैं।
2: देखिए समर जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था तीन देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र है उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 एमओयूज हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्र मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है, प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और केपीयू जनरल इलेक्शंस कमीशन जो इंडोनेशिया का है दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पर भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFCIOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंहासरी में और प्रम्बनान मंदिर जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गया। इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर जोगजकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्वार और पुनरोद्वार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 रिव्यूज और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर तो इस यात्रा से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
2: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए। और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो डीज इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है एक्ट ईस्ट की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम

0: तार के परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की, और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरीटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई, और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है, जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया, और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था, जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है, जिसमें जापान और अमेरिका भी है, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत, तो उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पड़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है, और इस वजह से ये सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमरीका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें, तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं, और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं, और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता है। न्यूजीलैंड जिसने बहुत ही कम देश है जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया

0: एशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि आर्टिस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा है और भारत की जो नीति है, चाहे वो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है, आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
0: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वियतनाम में कश्ती हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैयाहों के जस्ते खाकी को हो ची मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाकाई फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत ने दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका तौर पर आलमी नंबर 1 मुकाम हासिल किया। अमरीका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। इसराइल में इस साल 27 अक्टूबर को पार्लियामेंट इंतखाबात कराए जाएंगे और यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जावीर को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। अब खबर तफसील से। वियतनाम में फुक्वैक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैयाहों के जस्ते खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VN979 के जरिए आज हो ची मिन्ह शहर से वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सिफारत खाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगी और तवक्को के भारतीय वक्त के मुताबिक परवाज रात 9:35 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंच जाएगी। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हम्द बिन अल खलीफा सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हम्द बिन खलीफा सानी का कल इंतकाल हुआ था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिंदूर रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा अमीर के वालिद शेख हम्द बिन अल खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि वो एक दूरअंदेश रहनुमा थे जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमा जहत तरक्की से हर शहरी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली यकीनी हो जाती है तो इससे मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस बाईस तरगीब जज्बे के साथ भारत की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। कॉमर्स सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन, बेल्जियम, फिनलैंड के लिए एक आला सतह भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत करेंगे। कॉमर्स और तजारत की वजारत ने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारतीय इकतदारी शराकतदारियों को मुस्तहकम करना है जो तजारत, सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, पायदारी पर मरकूज है। अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे जहां वो स्पेन की तजारत CEOE और ICEX स्पेन तजारत और सरमाकारी के चैम्बर्स के साथ एक कारोबारी गोलमेज में शिरकत करेंगे। इस इजलास में स्पेन और भारतीय सनअतकार शामिल होंगे जिन्हें ऑटोमोबाइल, काबिल तस्दीक तवानाई, रेलवे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, खुराक को डब्बा बंद करने, सियाहत के शोबों में इम्कान तलाश करने का मौका फराहम होगा। जनाब गोयल इस माह की 14 और 15 तारीख को बेल्जियम जाएंगे। इसके बाद वो 16 और 17 तारीख को फिनलैंड का दौरा करेंगे। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए मोदी पोजीशन को यकीनी बनाना है, जो अमले के तहफ्फुज़ की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। पांच भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामंगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनक़िद किए गए। इन नौजवान माहिर तबीयात ने एक गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया है। तलाई तमगे जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कनिक्स चैन, इंदौर के रिजेश आनंद मोंडोले, दिल्ली के ऋषिगढ़, मुंबई के शेष सूर्या और अहमदाबाद के समृत जोशी। भारत ने इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा के माबेन रूस, चीन, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया, ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया। इस उसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है, जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी बाबा मरकज ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का कौमी मरकज है। एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीत कुमार महंती ने तमगे जीतने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि तबीयत के नौजवान माहरीन की यह गैर मामूली कामयाबी मुल्क के लिए बड़े फख्र का लम्हा है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटोकॉन ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के हमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटोकॉन ने बताया कि हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में किए गए। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहर जस्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर लिया। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतरेस ने ईरान और अमरीका के दरमियान ताजा फौजी महाज़ आरई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकई और आलमी नतज के लिए खबरदार किया है। ईरान के सिपाही पारदारे इनकलाब इस्लामी ने उर्दून, बहरीन, कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिजाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हाली हमलों के तनाज में जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दून में प्रिंस हसन फजाइया के अड्डे, बहरीन में शेख ईसा फजाइया के अड्डे, कुवैत में अबी अस सालिम और अहमद जाबिर फजाइया के अड्डों पर निशाना बनाया गया। ईरान के पासदार इंकलाब ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में ईंधन डिपो, गोला बारूद स्टोर करने के ठिकानों, फजाई दिफाई निजाम और राडार बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। उसने आबनाए हुरमुज में अमरीका के मजीद किसी फौजी सरगर्मी के खिलाफ तंबी भी की है। इसराइल के पार्लियामेंट किनसेंट ने ऐलान किया कि कौमी इंतखाबात इस साल 27 अक्टूबर को कराए जाएंगे। गाजा पर जंग शुरू होने के बाद से इंतखाबात वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की क्यादत के लिए एक रेफरेंडम के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसराइली पार्लियामेंट किनसेंट का रवा मुद्दत का हतमी इजलास जुमे को होगा। नेतन्याहू ने जून में इस बात की तस्दीक की थी कि वह आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जो इसराइल की सबसे लंबी मुद्दत तक खिदमत देने वाले वजीर आजम होंगे। खवातीन से मुतालिक कौमी कमीशन ने उज़्बेकिस्तान में केरलम से ताल्लुक रखने वाली 21 साल मेडिकल तालिबा को मुबैना तौर पर अजीत पहुंचाने और कत्ल के वाकये का अपने तौर पर नोटिस लिया है। कमीशन ने मस्कुरा तालिबा की मौत से पहले उसे हिरासत किए जाने, जिस्मानी ज्यादती और जबरन मजहब तब्दील करने की कोशिश के इल्जाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने केरलम के डायरेक्टर जनरल पुलिस को एक मुरासला भेजकर वजारत खारजा और ताशकंद में भारतीय सिफारतखाने के साथ तालमेल कायम करके इस वाकये की तेजी के साथ तहकीकात कराए जाने पर जोर दिया है और 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यैनिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ावीर को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर मर्दों का सिंगल का खिताब बरकरार रखा है। ये सिमर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स खिताब है। सिमर विंबल

0: लंदन में मर्दों का सिंगल खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में खेले जा रहे वाहिद तारीखी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलेगा। भारत को 269 रन की सफलता हासिल है। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग में 7 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर अपनी इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। भारत की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज यातिक भाटिया पहली खातून है जिन्होंने लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाई। भारत को इस तारीखी जीत के लिए 4 विकेट दरकार है। लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला खवातीन टेस्ट है। भारत की तरफ से सियाली सदरे और क्रांति गौड़ ने बिलतरतीब 2-2 विकेट हासिल किए। फीफा आलमी कप में क्वार्टर फाइनल के सभी मैच मुकम्मल हो जाने के बाद सेमीफाइनल मैचों के लिए टीमों के दरमियान मुकाबले तय हो गए। बुध को पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा जबकि स्पेन बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचा है। दोबारा को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वियतनाम में कश्ती हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैयाहों के जस्ते खाकी को हो चि मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अवी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत ने दीगर ममालिक के साथ मुश्तरक तौर पर आलमी नंबर 1 मुकाम हासिल किया। अमरीका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। इसराइल में इस साल 27 अक्टूबर को पार्लियामेंट इंतखाबात कराए जाएंगे और यैनिक सिनन ने अलेक्जेंडर जाबेर को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

0: ये आकाशवाणी है। वीएम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वियतनाम में एक कश्ती हादसे में मारे गए 15 भारतीय सयाहों के जसद खाकी को हो ची मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत ने दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका तौर पर आलमी नंबर एक मुकाम हासिल किया। अमरीका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। इसराइल में इस साल 27 अक्टूबर पार्लियामानी इंतखाबात कराए जाएंगे। और यैनिक किसनर ने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर विम्बलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: मैं आपको दे डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करना।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं?
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क।
3: श्रोताओं, फिल्म हम दोनों उस दौर की इकलौती फिल्म थी जिसमें नंदा और साधना 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियां एक साथ पर्दे पर नजर आई थीं। जब साल 2011 में इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर करके सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया तो देवानंद ने नंदा को स्पेशल प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन नंदा ने मीडिया से दूर रहकर विजयानंद के निजी थिएटर केतनव में अपने परिवार के साथ फिल्म देखी थी।

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। वेडिंग खेड़ा से पंजाब से हमारे साथ हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा। फिल्म हम दोनों के गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और संगीत जयदेव ने दिया था। अभी न जाओ छोड़कर और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसे सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।

कुमार हेड़ा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुरमीत सिंह मीता, ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। संगम रेडियो श्रोता ग्रुप गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार, सनी जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। नवा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन। गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल और उर्वशी। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। फिल्म हम दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन था जिसमें साधना यानी नीता अपने घर के मुख्य दरवाजे से देवानंद को अंदर खींच कर लाती हैं। शॉट के दौरान देवानंद ने ये कहकर आपत्ति जताई कि मुझे कोई ऐसे नहीं खींच सकता जैसे कुत्ते को पट्टी से पकड़कर ले जाते हैं। ये सुनकर विजय आनंद, जो फिल्म के असली निर्देशक और लेखक थे, इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि देवानंद उनसे उम्र में काफी बड़े थे। वे गुस्सा होकर सेट से वार्डन रोड के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चले गए और पूरी शूटिंग रुक गई। बाद में देवानंद ने अपनी गलती मानी और उन्हें वापस सेट पर बुला लिया।

क्रांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, ये जुड़े हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। पीटीआई संसद मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन। हम दोनों फिल्म का निर्देशन आधिकारिक तौर पर अमरजीत ने के नाम था, जो उस समय नवकेतन फिल्म्स के प्रचारक यानी पब्लिसिस्ट थे, लेकिन फिल्म के निर्देशन का पूरा काम वास्तव में देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने ही किया था। विजय आनंद ने अपने दोस्त अमरजीत को आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम क्रेडिट में नहीं दिया। ऐसी दोस्ती को सलाम है।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने ही वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने सिर्फ एक महीने में भारतीय समुद्री फौज में 4 नए स्वदेशी समुद्री जहाजों में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई के शहरा मंत्री नितिन गडकरी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। वणज के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत की आर्थिक भाईवाली में मजबूत करने के उद्देश्य अज तो 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम तो फिनलैंड के दौरे पर होंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन

लखनऊ के स्वागत भी कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे लखनऊ के कानपुर विस्तार सफर के समय में घटाया सिर्फ 35-40 मिनट पहुंच गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक घटना तो प्रभावित झारखंड के मजदूरों संबंधित मुद्दे का नोटिस लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड के रामगढ़ जिले के सरकारी वकील संजीव कुमार वालों दायर पटीशन तो बाद अध्ययन किया। राष्ट्रपति स्कोत्रोप ने फिर चक्र रोजगार सफरों में

इसका अकादमी एक महत्वपूर्ण कदम दस्तक समाचार के मंत्रालय लगभग 1.5 साल की पुस्तक का मुद्दा रहा है। उन्होंने भागीदारों में सिखलाई प्रोग्रामों के सरगर्मी में शामिल होने के अपना पहला कहा कि पानी संबंधी पहल कदम करके हासिल ज्ञान लागू करने की अपील की थी। भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक महिला टेस्ट मैच को अपनी पकड़ में इसकी विकेट ले लिया। 279 दौड़ा की लीड ने दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने 7 विकेटों पर 341 दौड़े अपनी दूसरी पारी खत्म करने इंग्लैंड ने 400

0: सरकार ने कहा कि देश की समुद्री सुरक्षा में मजबूत करने सिर्फ एक महीने वक्त भारतीय समुद्री फौजा के चार नए स्वदेशी समुद्री जहाजों में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क वरिष्ठ शहरा मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब छह लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। वणजे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यूरोप नाल भारत की आर्थिक भागीदारी मजबूत करने के उद्देश्य में अब तो 17 जुलाई तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर होंगे। तेहरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकाने के मिजाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेवारी ली है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली एसआईटी की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासिरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वियतनाम में कश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसदे खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं और ख्वातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर मेजबान इंग्लैंड भारत के साथ तारीखी वाहिद टेस्ट मैच में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत के तायुन का अमल या किसी फर्द को गैर मुल्की करार देने की कार्रवाई मुनसिफाना होनी चाहिए और इसमें अदालती उसूलों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने 27 अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह बात कही जिन्हें आसाम में गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने 27 केसों में गुवाहाटी हाईकोर्ट और गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के अहकाम को रद्द कर दिया। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि मुतालिका ट्राइब्यूनल की जानिब से इन केसों की दोबारा समाअत होने तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ डराने धमकाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तशकील दी गई खसूसी जांच टीम एसआईटी को हिदायत दी है कि वो अपनी तहकीकात के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किए हैं जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए एहतियात में मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात सीबीआई से कराने की अपील की गई है। इससे कबल उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को 3 अरकान पर मुश्तमिल एसआईटी तश्कील दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के दरख्वास्त गुजार संजीव कुमार अम्बाष्ठा की जानिब से एक उजरदारी दाखिल किए जाने के बाद तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक में मुतासिरा झारखंड के वर्करों के मामले का नोटिस लिया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने रोजगार और मेहनत के सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो फौरी जरूरी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल

0: सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले के 4 बहरी जंगी जहाजों को सिर्फ 1 महीने में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है ताकि मुल्क के बहरी दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत INS महिंद्रा गिरी को इस महीने की 11 तारीख को बहरिया में शामिल किया गया है, जो मुल्क में ही डिजाइन किया गया नीलगिरी जुमरे का स्टेल्थ फ्रिगेट है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय बहरिया ने पिछले महीने की 21 तारीख को मुल्क में ही तैयार किए गए 3 जंगी बहरी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल हैं। इन जंगी जहाजों को फजाई शिकन, जमीनी शिकन और आबदोज शिकन जंगी जहाज साजो सामान समेत मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A नए सिलसिले के 7 गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज बनाने का भारतीय बहरिया का जदीद तर्ज का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है। यह जंगी जहाज बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तमाम शोबों में भरपूर अंदाज से कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इन जहाजों को बेशतर मुल्की वसाइल से तैयार किया गया और ये आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की अक्कासी करते हैं और इनसे मुल्क के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज़ाम को तकवीत मिलेगी। इन जंगी जहाजों से बहरी सिक्योरिटी में इजाफा होगा, बहरी मईशत को तकवीत मिलेगी और एक सरकर्दा बहरी ताकत के तौर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में फूकोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सयाहों के जसद खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VN979 के जरिए आज हो ची मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगी और तवक्को है कि भारतीय वक्त के मुताबिक यह परवाज रात 9:35 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वज़ीर-ए-दिफ़ा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमराह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 63 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे तवील सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर होने के साथ साथ मुल्क का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे भी है जिसे ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है जो ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीनों पर मबनी है। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक्कद एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और फिजाई खिदमात की स्कीम की सताइश की है। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम का आगाज रियासत में सियाहत को बेहतर बनाने और बिहार में कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए किया गया है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव का तीसरा मरहला हो रहा है। रियासत के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और 178 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की मजमूई सरमायेकारी के साथ 20 सनती यूनिटों का आगाज किया। इस मौके पर डॉ मोहन यादव ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश को सिर्फ खेती के लिए जाना जाता था लेकिन अब यह रियासत ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज बना रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइय के अड्डे, बहरेन में शेख ईसा फिजाइय के अड्डे और कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइय के अड्डों को निशाना बनाया गया है। खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।

कमल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की शपथ हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया और इंग्लैंड को 457 रन का निशाना दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकत करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जहोड़िया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासर झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 6-6, 3-6, 4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130-6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता

0: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे बोले नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कंपनियां।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब

0: सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं तीन चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझ लिया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और अडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुरमूज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुरमूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस वक्त समय हो रहा है दोपहर के 2:31 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। इस सफर में आज आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। हिंदी सिनेमा का पर्दा, जहां हर दौर में अपनी कुछ ऐसी कहानियां लिखी जिन्हें वक्त भी धुंधला नहीं कर पाया। कुछ चेहरे पर्दे पर दिखाई दिए और सितारे बन गए, और कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर सितारों की तकदीर लिख गए। ऐसे ही एक फिल्मकार थे जो है हमारे आज के कलाकार, जिन्हें मैं बात कर रही हूं प्रकाश मेहरा की। 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा ने हिंदी सिनेमा को सिर्फ सफल फिल्में नहीं दी, उन्होंने एक ऐसा सिनेमाई दौर रचा जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, दोस्ती भी, मोहब्बत भी और जिंदगी के कई रंग भी। उनका सफर आसान रास्तों से होकर नहीं गुजरा। फिल्मी दुनिया में उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और साल 1968 में आई उनकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी। बतौर निर्देशक इस फिल्म ने उन्हें एक पहचान दिलाई। शशि कपूर और बबीता अभिनीत इस फिल्म में रोमांस था, हल्का फुल्का मनोरंजन था और खूबसूरत संगीत भी। प्रकाश मेहरा के लंबे फिल्मी सफर की शुरुआत जिस फिल्म से हुई उसका ये गीत आज भी हिंदी फिल्म संगीत की यादों में अपनी जगह बनाई हुई है, है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सिनेमाई सफर की इस खूबसूरत गीत के साथ।

सुनिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। हसीना मान जाएगी की बात, जिस फिल्म का अभी आपने ये गाना सुना, गायक स्वर थे इसमें लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की। हसीना मान जाएगी के बाद प्रकाश मेहरा का सफर आगे बढ़ा, लीला समाधि और आन बान जैसी फिल्में आईं, लेकिन साल 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें न सिर्फ प्रकाश मेहरा के सफर को बदल दिया बल्कि हिंदी सिनेमा को भी एक नया नायक दे दिया। फिल्म थी जंजीर और वो नायक थे हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। जंजीर को अक्सर उसके गुस्से और उसके तीव्र के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसी फिल्म में भावनाओं का एक दूसरा सिरा भी था। रिश्तों के बनने और बिगड़ने के बीच मन में उठती वह कसक जो कई बार शिकायत बनकर नहीं एक सवाल बनकर रह जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म जंजीर का ये गीत।

दोस्तों, उस दौर में जब पर्दे पर रोमांटिक नायकों का बोलबाला था, जंजीर का विजय अपने भीतर गुस्सा, बेचैनी और व्यवस्था से टकराने का साहस लेकर आया। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की यह मुलाकात आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मी साझेदारियों में बदल गई। एक सफल फिल्म जो होती है ना, वो कभी कभी इतिहास बनाती है, लेकिन एक सफल जोड़ी कई इतिहास लिख जाती है। जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का साथ आगे बढ़ा और फिर आई हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी फिल्में। इन फिल्मों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, प्रकाश मेहरा अपने नायक को सिर्फ ताकतवर नहीं बनाते थे, उसके भीतर एक दर्द भी रखते थे। उनका नायक दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने भीतर के अकेलेपन से हमेशा नहीं जीत पाता था। और शायद इसी दर्द की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। सिकंदर के पास शोहरत थी, दौलत थी, लेकिन जिसे दिल ने चाहा वो उसका न हो सका। पर्दे पर अमिताभ बच्चन और निर्देशन की कुर्सी पर प्रकाश मेहरा। इस मेल ने एक ऐसी कहानी रची जिसका दर्द आज भी उसके गीतों में जिंदा है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में आपके गीत सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। हमारे साथ आप सभी श्रोता जुड़े हुए हैं। आप सभी को अपना जरूर बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम आप भी सुन रहे हैं एक ही कलाकार। हमारे साथ बने रहिएगा दोपहर 3 बजे से 3:30 तक हम आपके लेकर आएंगे मैथिली मेलोडी और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन गजल। हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनके नाम बता दूं, ये हैं संजीव सिंह ढींगिया, नमन ढींगिया और पार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। और फिर हमारे साथ है आज के सफर में हमारे साथ हम सफर है छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफीन कौसर, मोहम्मद इस्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के सदस्य। फिर है बुलंदशहर से अमित अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार। कस्बा गुन्नौर यूपी से है फारूक अली खान और पूरी खान फैमिली। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं सिंधन मुखी, अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी जी, स्वयं सोनीपत, शादी नगर से और इन्हें कार्यक्रम प्रकाश मेहरा का अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हमारे सिंह गांव लोहकर ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, कुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मुस्कान जी और नमस्कार कर रही है, शुक्रिया आपको हमारा भी नमस्कार। और ये लिख रहे हैं गोवर्धन कॉलोनी बिहार, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इनके साथ मीना मुस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मुस्किन और चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिखाना खुराना। हमारे साथ हमारे और दूसरे दोस्त भी जुड़े हुए हैं, ये है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ धर्मेंद्र श्रीपा जी है और बहुत शुक्रिया और आपकी बातें हमारी भी जानकारी में इजाफा करती है और आपको प्रस्तुति अच्छी लग रही है उसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, संबलपुर कांकेर से, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे संग बहुत सारे दोस्त और भी जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जानकारी अच्छी लग रही है, ये जानकर हमें अच्छा लगा, शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। उनकी फिल्मों की एक और खूबी थी, उनके गीत कहानी से अलग नहीं लगते थे। कई बार जो बात किरदार शब्दों में नहीं कह पाता था वही बात गीत कह जाता था। साल 1981 में आई फिल्म लावारिस, उसकी कहानी भी एक ऐसे इंसान की थी जो दुनिया में अपनी पहचान तलाश रहा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वह कौन है, सवाल यह भी था कि समाज किसी इंसान को उसके जन्म से पहचान

जानता है या उसकी कर्म से। मैवारिस की कहानी के केंद्र में पहचान की यही तलाश थी, लेकिन उसके साथ रिश्ते की दूरियां और पिछड़ने के बाद फिर मिलने का एहसास भी था। कभी कभी समय लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाता है। जिंदगी अपनी राह चलती रहती है और फिर किसी मोड़ पर वही चेहरे दोबारा सामने आ जाते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। ऐसे ही पिछड़ने और फिर मिलने के एहसास को समेटता ये गीत आपकी नजर।

आप सुन रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस का गीत। हमारे सच दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है जनकपुरी सहारनपुर से

आदर्श मेहरा की फिल्मों की दुनिया में जिंदगी हमेशा एक ही रंग में दिखाई नहीं देती। उनके किरदार कभी हालात से लड़ते थे, कभी रिश्तों में अपना एहसास या हिस्सा तलाशते थे और कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर से अकेले रह जाते थे। 1982 में आए नमक हलाल आज भी अपने संवादों, अभिनय और गीत संगीत के लिए याद की जाती है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, प्रवीण बाबी और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म प्रकाश मेहरा की उस खासियत को एक बार फिर सामने रखती है जिसमें वे बड़े सितारों और लोकप्रिय सिनेमा के बीच हर किरदार को अपनी अलग पहचान देते थे। और फिर 2 साल बाद आई फिल्म शराबी। विक्की कपूर, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी लेकिन जिंदगी में अपनापन कम था, वो लोगों के बीच था फिर भी कहीं अकेला था। उसके पास बहुत कुछ था लेकिन शायद वही नहीं था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शराबी में प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर दिखाया कि किसी इंसान की जिंदगी को सिर्फ उसकी कामयाबी या दौलत से नहीं समझा जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी राह होती है, अपनी तलाश होती है और अपनी मंजिल होती है। कभी मंजिल मिल जाती है, कभी रास्ते बदल जाते हैं और कभी जिंदगी हमें यह समझा देती है कि हर किसी का सफर एक जैसा नहीं होता।

रिश्तों की दुनिया को महसूस करते हैं और मंजिल अपनी जगह है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 1506
1: दोपहर के 3 बजे ही हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सभी आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 के एकशा प्रोग्राम के तहत आज हम पेश करेंगे शाहजहां फिल्म की कहानी और नगमे। 4 बजे से आप लोग सुन सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तालुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पीएम 1073 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश।

मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में फुकोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैयाहों के जसद खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VN979 के जरिए आज होशीमिन शहर से भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होशीमिन शहर से रवाना होगी और तवक्को है कि भारतीय वक्त के मुताबिक ये परवाज रात 9:35 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कौमी सेहत रिसर्च पॉलिसी के मुसवदे पर तजवीजें तलब की हैं। इस पॉलिसी का मकसद भारत के सेहत से मुतालिक तहकीकी इको निजाम को मुस्तहकम बनाने और इसके लिए रहनुमाई की खातिर एक कलीदी फ्रेमवर्क तैयार करना है। वजारत ने इस सिलसिले में तजवीजें और राय इस महीने की 27 तारीख तक भेजने की अपील की है। पंचायती राज महकमे की वजारत में सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने पानी के बंदोबस्त में मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए इज्तिमाई इकदामात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज नई दिल्ली में कौमी सतह के तरबियती और मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे, जो ग्राम पंचायतों की जानिब से पानी की यकीनी फराहमी की मनसूबाबंदी और पानी के इस्तेमाल में तवाजुन बरकरार रखने से मुतालिक है। जनाब भारद्वाज ने कहा कि बावकसद तब्दीली तभी आ सकती है जब सभी लोग एक मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए मिलकर काम करें। बिहार में वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और फिजाई खिदमात की स्कीम का आगाज किया है। वज़ीर आला ने कहा कि स्कीम का आगाज रियासत में सेहत को बेहतर बनाने और बिहार में कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हमराह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 63 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भारत का दूसरा सबसे तवील सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर होने के साथ साथ मुल्क का ऐसा पहला एक्सप्रेस वे भी है जिसे ऐसे तामीराती टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है जो ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीनों पर मबनी है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिजाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइया के अड्डे, बहरीन में शेख ईसा फिजाइया के अड्डे और कुवैत में अनस सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में ईंधन डिपो, गोला बारूद स्टोर करने के ठिकानों, फिजाई दिफाई निजाम और रडार बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। उसने आबनाए हुरमुज में अमरीका की मजीद किसी फौजी सरगर्मी के खिलाफ तंबीह भी की है। खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में आज इंग्लैंड दोपहर में भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की सबकत हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया में मुनक़्क़िदा 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने का तमगा जीतने पर भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड में 5 भारतीय तलबा ने सोने के तमगे जीते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले

0: अहलुवालिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुदबूत की तहकीकात करने वाली एसआईटी की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। वियतनाम में किश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसद खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाए जा रहे हैं और ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दून बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पिछले जुम्मे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी का लिखाई गीत जिसे सजाया है नौशाद ने, वो है बैजू बावरा।

मुबारक बेगम और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी परवीन, नगमा निगार थी राजा मेहदी अली खान, मौसीकार ए आर कुरैशी। और हमने जब सुनी मन्ना डे की आवाज में सीमा फिल्म का नगमा जिसे मौसीकी सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: हमारी सहयोगी साथी आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी क्लासिक फिल्म शाहजहां की कहानी और नगमे, मोहब्बत के तर्जुमान पाबंदी कौल की अक्कास और जज्बा कुर्बानी पर मबनी ये फिल्म सन 1946 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हिदायतकार थे ए.आर. कारदार, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार नौशाद, गुलकार थे कुंदन लाल सहगल, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी। फिल्म के अहम सितारे हैं कुंदन लाल सहगल, नसरीन, रागिनी जयराज और सुलोचना चटर्जी। तो लीजिए समाज फरमाइए फिल्म शाहजहां की कहानी और नगमे, तहरीर और आवाज इरफान आजमी की है।
2: हिंदुस्तान में मुगल शहनशाह शाहजहां का दौरे हुकूमत, मुल्क में हर सुबह चैन सुकून अमन अमान का दौर दौरा है, लेकिन हर खास आम के जबान पर रूही नामी एक हसीन और जमील दोशेजा के चर्चे हैं और इसकी वजह है नौजवान शहर सुहेल यानी अदाकार के एल सहगल। एक दिन रूही यानी अदाकारा रागिनी अपने घर के दरीचे में खड़ी ईद का चांद देख रही होती है कि अचानक सुहेल की नजर उसके हसीन चेहरे पर पड़ती है और वो रूही के हुस्न जमाल पर फरीफ्ता होकर उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है। सुहेल अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रूही के लिए गीत गाता है।

तुरही मिर्जा दिलावर बेग की बेटी है, जो मरते वक्त अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी राजपूत सरदार ज्वाला सिंह को सौंप गए थे। ज्वाला सिंह ने दिलावर बेग से किए वादे के मुताबिक रूही की परवरिश के फराइज बहुसन खूबी अंजाम दिए। अब ज्वाला सिंह को रूही की शादी की फिक्र है, इसलिए वो उसकी शादी करके अपने फर्ज से सबकपोश होना चाहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि सुहेल के गीतों की वजह से रूही के बेशुमार आशिक हो गए हैं, जो उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। जब कभी ज्वाला सिंह रूही की शादी करना चाहते हैं और बारात आती है, तो रूही की ये नामनिहाद तमाम आशिक बारात पर हमला कर देते हैं। ऐसा कई मर्तबा होता है जिसकी वजह से रूही की शादी मुमकिन नहीं होती। रूही की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए उसके मुंह बोले भाई यानी ज्वाला सिंह के 5 बेटे एक के बाद एक कत्ल हो जाते हैं। दूसरी जानिब शाही महल में मलिका मुमताज महल यानी अदाकारा नसीन की खास कनीज जहां फिजा यानी सुलोचना चटर्जी मलिका को एक गीत सुनाती है।

0: गीत सुनने के बाद मलिका मुमताज महल कनीज से पूछती है कि ये गीत हकीकत पर मबनी है या महज शायरी। जवाब में कनीज सुहेल का रूही के इश्क में मुब्तला होना, रूही के लिए गीतों का लिखना और रूही के हुस्न जमाल के बारे में मलिका को बताती है। उधर शहनशाह शाहजहां ज्वाला सिंह को दरबार में बुलवाकर उस कत्लो गारत गरी की वजह दरियाफ्त करते हैं जिसका ताल्लुक रूही की जात से है।
1: ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमन व अमान की जिंदगी से उतार अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बताओ इस बदमनी का सबब पूछते हैं।
2: इसका सबब बुला हरा हुआ एक कॉल है जहाँ बना, वो कॉल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सबसे उतर गए।
1: मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा?

0: अकरम की लाज और माथे का तिलक है तिबले आलम। वो जूं जूं जवान होती गई मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी।
1: शाहजहां अपनी अमलगा मुमताज महल से मशवरा करने के बाद ज्वाला सिंह से कहते हैं कि वो रूही को शाही महल भेज दें ताकि बादशाह की निगरानी में रूही की शादी बखैर हो भी मुमकिन हो सके। ज्वाला सिंह शहनशाह के हुक्म की तामील में रूही को शाही महल भेज देते हैं। रूही के शाही महल जाने से सुहेल को बहुत दुख पहुंचता है। महल की खास कनीज जाफिजा को जब रूही के महल आने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान होती है। उसे ये फिक्र है कि कहीं रूही के हुस्न से शहनशाह शाहजहां मुतासिर ना हो जाए और उसे अपनी मलिका ना बना लें, इसलिए वो मुमताज महल से अपनी परेशानी बताते हुए रूही को महल ना आने का मशवरा देती है। कनीज की बात सुनकर मलिका उसे बुरी तरह डांट देती है क्योंकि उन्हें अपने शौहर शाहजहां की मोहब्बत और वफादारी पर मुकम्मल भरोसा है। मुमताज महल की माँ बहन भाई वगैरह सभी मुमताज महल को समझाते हैं लेकिन मलिका किसी की बात नहीं मानती और रूही महल में आ जाती है। अब शाहजहां को रूही की शादी की फिक्र होती है और इसके लिए वो ऐलान करवा देते हैं कि रूही से शादी के ख्वाहिशमंद एक खास दिन शाम को महल में जमा हो जाएं। रूही से शादी के ख्वाहिशमंदों की एक भीड़ महल में जमा हो जाती है। शाहजहां उस भीड़ से मुखातिब होकर कहते हैं कि उसी से रूही की शादी होगी जो तमाम ऐशो आराम रूही को मुहैया करा सकता हो और जो ऐसी जन्नत बना सकता हो जिसे देखकर हर कोई बेसाख्ता कह उठे, गर फिरदौस बर रूए जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। लोग बादशाह की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और ये कहते हुए चले जाते हैं कि जमीन पर जन्नत को ले आना हरगिज मुमकिन नहीं है।
0: माअल्लाह, ये लोग इस गलतफहमी में मुब्तिला हो गए। वो मुकद्दस जन्नत भला कौन बना सकता है?
2: दरअसल ये लोग जहां बना के इशारे को नहीं समझे।
0: ना समझ है ना दान है। इस इशारे से हमारा मकसद सिर्फ इम्तिहान है मुमताज, वरना हर मोहब्बत करने वाले का घर महबूब के लिए जन्नत है, हाँ वो शाहजहां का महल हो या फकीर का झोंपड़ा।
1: लेकिन एक शख्स जो वापस नहीं जाता और शहनशाह शाहजहां के चैलेंज को कबूल कर लेता है वो है नौजवान शायर सुहेल। सुहेल का अज़्म देखकर शाहजहां बहुत खुश होते हैं। सुहेल कहता है कि वो एक साल के अरसे में बादशाह के कहने के मुताबिक जन्नत कायम कर देगा। शाहजहां सुहेल को कौल देते हैं और उससे ये वादा करते हैं कि रूही एक साल तक महल में सुहेल की अमानत के तौर पर रहेगी और सुहेल के वापस आने पर उसकी शादी रूही से कर दी जाएगी। इसी दरमियान ईरान का मशहूर फनकार और मेमार अमीर अली शिराजी यानी अदाकार जयराज शहनशाह शाहजहां से मिलने के लिए हिंदुस्तान आता है। रूही के हुस्न जमाल के चलते उसके कानों तक भी पहुंचते हैं। अगले दिन शिराजी शाही महल में शाहजहां से मुलाकात करता है और अपने फन के मुतालिक बताता है। वो शाहजहां से कहता है कि अगर उसे अजनबी और अंधे के हाथ दिखा दिए जाएं, तो वो सिर्फ हाथ देखकर ही बता देगा कि कौन हसीन है और कौन नहीं। इस सिलसिले में बादशाह अपनी मलका मुमताज महल से पूछते हैं। मलका मशवरा देती है कि शिराजी को कंगन दे दिए जाएं, उनमें एक कंगन खास शाही निशानी वाला हो। शिराजी सब हाथों में कंगन पहना दे और जो सबसे खूबसूरत हो उस हाथ में शाही निशानी वाला कंगन पहना दे। इस तरह बादशाह को पता चल जाएगा कि कौन सबसे हसीन और खूबसूरत है। बादशाह को मलका का यह मशवरा पसंद आता है। शिराजी को कंगन दे दिए जाते हैं और एक कंगन शाही निशानी का अलग से दे दिया जाता है। अब शिराजी बादशाह से दरख्वास्त करता है कि जिस हाथ में वो शाही कंगन पहनाएगा बादशाह उस कनीज से शिराजी की शादी कर दें। शाहजहां उसकी दरख्वास्त कबूल कर लेते हैं। महल की खास कनीज जाफिजा चोरी छुपे शाहजहां और शिराजी की बातें सुन लेती है। उसके जहन में फौरन ही ये ख्याल आता है कि अगर किसी तरह रूही की

राधी श्री राधी से हो जाए तो रूही महल से चली जाएगी। इसी मकसद से कमीज रूही को ये कहकर बहला फुसला कर ले आती है कि ये शख्स शिराजी किस्मत का हाल बताता है और जिसकी अच्छी किस्मत होती है उसके हाथ में कंगन पहना देता है। अब पर्दे के पीछे से कई हाथ शिराजी के सामने आते हैं और वो हर हाथ में कंगन पहना देता है। जब रूही का हाथ उसके सामने आता है तो शिराजी उसके हाथ में खास शाही निशानी वाला कंगन पहना देता है। कनीज जाफिदा शिराजी के हाथों रूही को कंगन पहनाने की खुशी में गीत गाती है।

इसी दरमियान एक साल बीत जाता है और सुहेल वापस आ जाता है। वो शहंशाह शाहजहां से कहता है कि वो बाहर चलकर किले के सामने उसके जरिए बनाई गई जन्नत का दीदार कर लें। शाहजहां के हमरा चलते हुए सुहेल एक नगमा गाता है।

0: शाहजहां जब बाहर आकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, वो सुहेल से बहुत नाराज होते हैं।
1: ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। गुलाम से कुछ गुस्सा ही हूँ, बेशक तुमने मां बदौलत की अक्ल और दिमाग पर अपने अशार की शोबदाबाजी से जादू कर दिया और हमारी निगाहों को धोखे में डाल दिया। इन जानिब की मुराद किसी ख्याली जन्नत से न थी बल्कि आसूदगी और खुशहाली से भरा हुआ वो घर मकसूद था जिसमें रूही सुख और चैन की जिंदगी बसर कर सके।
2: गुस्ताखी माफ हो जहां पर, हुजूर ने वादा फरमाते वक्त जन्नत की तस्वीर नहीं फरमाई थी।
1: सच है तुम कायल हो गए सुहेल, अब जमाना तस्लीम करे या न करे मगर हमें एतराफ है कि हमने तुम्हारी ख्याली जन्नत में भी रूही को खुशहाल देखा। बस मुनासिब इंतजाम के बाद रूही तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी।
0: शिराजी शाही महल में रूही का मुजस्मा लेकर आता है और शाहजहां से दरख्वास्त करता है कि वो मुजस्मे से नकाब हटाकर उसके फन की दाद दें। लेकिन जब शाहजहां नकाब उठाते हैं तो रूही का मुजस्मा देखकर सख्त नाराज होते हैं और शिराजी को फौरन मुजस्मा तोड़ने का हुक्म देते हैं। हुक्म के मुताबिक शिराजी रूही का मुजस्मा तोड़ता है और दूसरी जानिब शाही महल से वापस आते हुए सुहेल खुशी से सरशार होकर गीत गाता है।

0: मुमताज शहंशाह शाहजहां को मशवरा देती है कि रूही से भी उसके दिल का हाल मालूम किया जाए कि वो किसको चाहती है। रूही की मर्जी मालूम होने पर जब वो शाहजहां को बताती है कि रूही शिराजी को पसंद करती है तो शाहजहां कश्मकश में पड़ जाते हैं। मलिका सुहेल को दौलत से खरीदने की बात करती है मगर शाहजहां अपने वादे की पाबंदी की वजह से ये बात पसंद नहीं करते। आखिरकार वो अपने वादे और कौल पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हुए उस वक्त तक के लिए मुमताज महल से जुदा रहने का फैसला करते हैं जब तक कुदरत इस मसले को हल न कर दे।
1: बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे।
2: कुर्बानी?
1: हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं।
0: अब रूही सुहेल को समझाने के लिए उसके घर जाती है और कहती है कि उसी ने सुहेल को कभी पसंद नहीं किया क्योंकि वो उसके मुंह बोले भाइयों का कातिल और उसकी बदनामी का जिम्मेदार है। बिलाखिर रूही शाहजहां और मुमताज महल की जान बचाने का वास्ता देकर सुहेल को राजी कर लेती है और वो बादशाह और मलिका की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान करते हुए रूही से शादी न करने का फैसला करता है। उसका दिल टूट जाता है और उस टूटे दिल की आवाज नगमा बनकर उभरती है।

0: तरह की प्रोग्राम है। हरजीत कौर तुहाडे किते प्रोग्राम घेन के हाजर है। भैनो मिरावो, आज प्रोग्राम दी शुरुआत खावन पिलावन नाल करें दे हां। सरायकियां दा सुभा है खिलावन पिलावन दा। उंज ता बहु छावा ते खाने मशहूर है, पर राजस्थान दा खाना ता एक खजाना है। खान विच बहु स्वादी थींदे हिन, ते आज खाना खजाना विच
1: पूनम पुंजानी
0: तुहाको दसेंदे पाई हिन कि राजस्थान दे मशहूर खाने दाल भाटी ते चूरमा किवे मनावणे हिन। आओ सुनेंदे हां।
2: राम राम जी, मैं पूनम पुंजानी तुसा सारे बेणी ब्रावां दा स्वागत करेंदी हां। उम्मीद करदी हां तुसा सब ठीक ठाक होसो। चलो आज मैं तुहाकू राजस्थान दी एक बहु ही स्वादी डिश बनावण दा तरीका दसेंदी हां, जेड़ी मैकू मेरी दी ने सिखाई है। मैं पहली बारी हुंदे हाथ दी बनी हुई दाल बाटी चूरमा खादी है। हुंदे बाद ते साडा जड़न दिल करेंदे असां बना गिंदे हां। राजस्थान अपने गौरवमयी इतिहास, शानदार किलिया, महला ते स्वादी स्वादी खावण दी चीजां वास्ते पूरी दुनिया विच बहु ही मशहूर है। उत्थे खावण पीवण दी इतनी ज्यादा वैरायटी है कि जेड़ा तुसा अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजस्थान विच खावण दा स्वाद वधाउण वास्ते सब तो ज्यादा मसाले, घ्यू, तेल वगैरा दा इस्तेमाल कीता वेंदे। उत्थो दा खाना जितना स्वादी हुंदे उतना ही शरीर वास्ते सेहतमंद भी हुंदे। राजस्थान दी बहु सारी इयो जी खावण दी चीजा हैं कि सुन के ही तुहाडे मुंह विच पानी आवे सी, जिवें गट्टे दी सब्जी, मावा कचौड़ी, मिर्च वड़ा, प्याज दी कचौड़ी, केर सांगरी, बाजरे दी राब ते दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा दी ते गल ही अलग है। क्या स्वाद, क्या सूरत, देखते ही दिल करेंदे फटाफट बने ते खा गिनो। दाल बाटी चूरमा विच अलग अलग तीन तरह दी चीजा दा मेल हुंदे। हिंदे विच करारी मसालेदार दाल, तली या भुनी हुई बाटी ते मिठा चूरमा। बाटी घ्यू दे विच डुबी हुई भी बनदी है ते थोड़े जे घ्यू नाल भी बन सकदी है। पहले लोग ज्यादा काम करदे हन ते खावण दी परहेज भी ना करेंदे हन क्योंकि सब कुछ हजम कीवें दा ई। अजकल सब इतना आसान की गए कि साडे शरीर ते हिलदे नहीं लेकिन दिमाग दा काम ज्यादा हुंदे। अजकल बच्चे अपनी सेहत दा बहुत ध्यान रखेंदे क्योंकि हर चीज विच मिलावट हुंदी है। शरीर मोटा ना थी वने ही वास्ते सोच समझ के खांदे पींदे ते बाटी असा भुन के गट घ्यू विच भी बना सकदे हां ताकि बच्चे भी खा सकन। दाल बाटी चूरमा नमकीन ते मिठे दा मिश्रण हुंदे, तीनो स्वाद मिला के खावण दा मजा वध वेंदे। राजस्थान दे हर त्योहार, जन्मदिन, शादी समारोह, पार्टियां विच तुहाकू दाल बाटी चूरमा जरूर डिखवे सी। चलो अज मैं तुहाकू दाल बाटी ते चूरमा बनावण दा तरीका दसेंदी हां। दाल बनावण दी समग्री। दाल चार पांच तरह दी दालां मिला के बनदी है, जिवें अरहर दी दाल, चने दी दाल, उड़द दी दाल, मूंगदली दाल ते लाल मसर। ए सारी चीजां मिला के दाल बनदी है। हिंदे वास्ते सानू दालां चाहीदियां, एक प्याज चाहिदे, एक टमाटर, हरा धनिया, अदरक, लसन, गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हिंग, नींबू, हरी मिर्च, देसी घ्यू, ए सब चीजा दी जरूरत पौंदी है। उड़द दी दाल, चने दी दाल, लाल मसर, मूंग दुली दाल ते अरहर दी दाल, सारी दालां को मिला के असा सारी दालां को धो के कुकर विच एक गिलास पानी पाके नमक ते अद्धा चम्मच हल्दी पाके चार पांच सीटियां डिवाडे सू। जर वेले थोड़ा जा ठंडा थी वने ते ढक्कन खोल के डेग घिनसू कि दाल अच्छी तरह गल गई होवे। दाल थोड़ी घाटी ही बनदी है। दाल को तड़का लगाउण वास्ते प्याज बारीक कटना है, टमाटर, लसन, अदरक बारीक कट के, हरी मिर्च सबको बारीक कट के ताकि मसाला फटाफट बन सके। कढ़ाई विच देसी घ्यू पाके एक चौथाई चम्मच हिंग, एक चम्मच जीरा पाके तड़का घिनसू। फिर लसन ते अदरक को थोड़ा जिया भुन के प्याज पाड़े सू। जर वेले प्याज लाल थी वने ते बारीक कटे हुए टमाटर पाके ते थोड़ा जा नमक पाके कढ़ाई को प्लेट नाल ढक के रख दे सू। टमाटर गल वेसिन ते हुंदे विच लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर पाके दू त्रै उबाले डिवा के हरा धनिया पाड़े सू। साडी दाल तैयार है। बाटी बनावण दी समग्री। आटा त्रै पा, सूजी 105, नमक स्वाद दे मुताबिक ते अजवाइन 1 चम्मच। वैसे ते बाटी बनावण वास्ते मोटा आटा चाहिदा हुंदे लेकिन असां सादा आटा त्रै पा घिन के हुंदे विच सवा

सौ ग्राम सूजी मिला डेसू ते ओ दरदरा अट्टा ही बन वेसी। अटके फिर हुंदे विच मिला डेसू। करीब 900 ग्राम अट्टा थी वेसी। हुंदे विच अपने हिसाब नाल चार वड्डे चम्मच देसी घ्यू पा डेसू मोयन वास्ते। अगर कोई ज्यादा घ्यू नहीं खांदा ते दू चम्मच भी पा सकते हां। फिर अट्टे अच्छी तरह मिला गिनसू। सोडा पावन नाल बाटी फुली फुली बनदी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी पा के सखत अट्टा मल गिनसू। ताजा पानी ही पावने। अट्टा मल के अद्धे घंटे वास्ते गिले कपड़े नाल ढक के रख देसू। बाटी बनावन वास्ते छोटे छोटे पेड़े बना के कचौड़ी की तरह पेड़े को अंगूठे नाल दबा के हुकू गोल गोल पेड़ा बना गिनसू। कचौड़ी विच ते असा दाल मिलिंदे आ, लेकिन ए अंदरो खाली रासी। अंदर दी तरफो ओ खाली रांदे ही वास्ते अट्टा कच्चा नहीं रांदा। बाटी बनावन दा तुहानू एक होर तरीका दसिंदी आ। जिवें असा घ्यू बनांदे आ ते हुंदे विच जिहड़ा विसनना रहवन दे हुंदे विच वी तुसा बाटी दा अट्टा मल सकदे हो। बाटी बनावन दे कई टोया यानी उपला जला के जिर वेले धुआं खत्म थी वने हुंदे उत्ते लोहे दी जाली रख के बाटी को हुंदे उत्ते रख दिंदन। जिवें ही भा थोड़ी ठंडी थी वने उस वेले बाटी को हुंदे विच दबा के रख दिंदन ताकि ओ अंदर तक चंगी तरह पक वने। जिर वेले ओ पक वेंदी ए ते हुकू सुके कपड़े नाल साफ करके देसी घ्यू दे विच डुबो दिंदन।

ஹாய் ஹாய் ஹாய் நீ மூவி

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਈ ਉਈ ਉਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਤੇ

Mi canción de barco, que tú le vienes mal.

सुल्तान बाहुजी मुढली सिक्ख्या ते रूहानी खोज बारे कुछ गल्लां। सुल्तान बाहुजी दी पहली अध्यात्मक अध्यापक उन्हां दी माता बीबी रास्ती ही सन। बचपन तो ही उन्हां दे चेहरे ते अजिहा रबी नूर सी कि कहा जांदा है कि जेकर कोई गैर मुस्लिम भी उन्हां दे चेहरे वल वेख लैंदा सी तां ओह प्रभावित होके इस्लाम कबूल कर लैंदा सी। जदों वड्डे होए तां उन्हां ने रूहानी ज्ञान दी पूर्ती लई मुर्शिद दी देखभाल शुरू कीती। हजरत हबीबुल्लाह कादरी सब तो पहला और रावी नदी दे कंडे वास्ते हजरत हबीबुल्लाह कादरी कोल गए, पर जल्दी ही उन्हां दा अध्यात्मिक अनुभव अपने मुर्शिद तो भी उच्चा हो गया, जिस बाद हबीबुल्लाह ने उन्हां नूं दिल्ली जाण दी सलाह दित्ती। दिल्ली विखे उन्हां ने कादरी सिलसिले दे महान सैयद अब्दुल रहमान चुलानी देहलवी दी शरण ली। उथे उन्हां ने रूहानियत दीआं सर्वोच्च मंजिलां तय कीतीआं अते मुर्शिद ने उन्हां नूं खिलाफत रूहानी उत्तराधिकार बख्शिआ।

गुरु का तहत आज महान गायिका आशा भोसले बारे कला। आशा भोसले की गल की करिए, कौन नहीं जानता इस आवाज नु, इस नाम नु। महान गायिका आशा भोसले ने अपने 7 दहाकियां तो वध लंबे संगीतक सफर विच तकरीबन 12,000 तो वध गीत गाए ने। हिंदी सिनेमा विच अपने बहुपक्षी गायकी लई जानी जांदी आशा जी ने पंजाबी संगीत जगत विच भी बहुत ही खूबसूरत अते सदाबहार गीत दिते ने। उन्हां दी आवाज दी खनक अते पंजाबी बोली दे शुद्ध उच्चारण ने इन्हां गीतां नू अमर बना दिता। आशा भोसले जी दे कुछ खास पंजाबी गीतां, उन्हां दी शैली अते पंजाबी सिनेमा विच योगदान दी तफसील नाल जानकारी अज आपां गल करांगे इक गुलोकार तहत। आशा भोसले दे खास पंजाबी गीतां दी जिहड़ी है लिस्ट है, उन्हां चों कुछ कु गीत साडे कोल वी ने जिहड़े असीं तुहानूं इस मजलिस दे विच सुणावांगे। उन्हां ने कई नामवर पंजाबी संगीतकारां अते सिर गायकावां जिवें महेंद्र कपूर अते मोहम्मद सदीक नाल मिलके सुपरहिट गीत गाए, जिवें कणकां नूं लग गया बोर मोहम्मद सदीक दे नाल, मैं तेरे पतले पतंग महेंद्र कपूर दे नाल, हथ लेवे तिम रोड़ा खावे महेंद्र कपूर दे नाल, आ गई रुत सौण दी एक इनां दा सोलो गीत है नी चंद चढ़िया चुबारे सोलो गीत है, यारी हांड दे मुंडे नाल लाणी सोलो, उस दा हौली हौली चूड़िया चढ़ा रोमांटिक गीत है पर सोलो है, पंजाबी पॉप फोक स्टाइल दे विच नजरा सेक लै मेरी सुत्ती दी खुल गई अख, सही गायक ने देवकी आनंद। ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੰਗਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਵਾ।

एक गुलकार है तुसी समाचार मारे सी आशा भोसले दे गाए गीत ते उना दे बारे कुछ चंद खास खास गला इस नाली आज का इस सिलसिला इत्थे खत्म हुंदा है नाली देश पंजाब दी मसलस वी इत्थे खत्म हुंदी दे दिओ इजाजत।

0: वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज, आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने, आओ सुनदे हां देहाती प्रोग्राम।
1: आजो बल साहब, आजो
2: पटवारी साहब। जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी। जय हिंद जी। हुण सुनो बल साहब, की हाले चाले?
2: हाले चाले वाहवा वधिया, चढ़दी कला। पटवारी साहब तुसी सुनाओ जी।
1: बिल्कुल ठीक है जी। देखो ये जेड़ी चढ़दी कला ना,
2: हां जी,
1: ये इसे तरह बनी रहनी चाहिए
2: जी। बिल्कुल जी।
1: हुंदा ये है कि अजकल जेड़े मैं देखदा किसे वेले जिदा तुसी आके बड़ी खुशी दे नाल,
2: हां जी,
1: आपस असी गलबात कीती है
2: जी,
1: इहदे नाल इक प्यार बनता है।
2: बिल्कुल जी।
1: और प्यार दे नाल नाल इक रिश्ता बनता है।
2: हां जी।
1: और ओ रिश्ते जेड़े ने अजकल जे तुसी आम जिंदगी च देखो ना बल साहब,
2: हां जी,
1: ये रिश्तियां च कड़कन बड़ी पैदा हो रही है।
2: ठीक है जी।
1: चाहे ओ परिवारिक रिश्ते ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों

0: और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से पांच दिन के स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के आठवें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिडी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं श्रोताओं, और ये समय है अगले कार्यक्रम कृषि जगत का।
2: जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम में किस तरीके से अचानक से बदलाव हो रहा है। हर घर में आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत खांसी जुखाम हो गया है, क्योंकि मौसम इस तरीके से बदल रहा है, किसी के हाथ की बात नहीं है। कहीं एकदम गर्मी हो जा रही है, कहीं बारिश के मौसम से मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो इंसान क्या ठंडा गर्म पे ध्यान नहीं दे रहा है, चीजें चेंज हो रही है। सेम उसी तरीके से बात करें हमारी जो फसलें हैं, कि जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा ऐसे में कैसे की जाए, कैसे उनका बचाव की जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि कभी भी बारिश हो जा रही है, कहीं भी सूखा पड़ जा रहा है, कहीं ओलावृष्टि हो जा रही है तो कहीं तेज हवाएं आ जा रही है।
3: बिल्कुल, और ऐसे में खरीफ फसलों को जो नुकसान होता है वो हमारे वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि हम किस तरह से उनकी देखभाल करें या उनको कैसे सुरक्षा प्रदान करें।
2: बिल्कुल, इसी से संबंधित अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक बातचीत। जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर ओपी सिंह। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
4: किसान भाइयों नमस्कार। आप फसलें उगाते हैं और उसको उगाने के लिए आपको मौसम, जलवायु और वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब ये वर्षा समय के साथ न हो और आपको आसमान की तरफ देखना पड़े या कभी कभी आपने बिजाई कर दी है, एकदम बरसात ज्यादा हो जाए, तो आपको जो फसलों से उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, तो इस पर आज हम डॉक्टर ओपी सिंह जी से विस्तार से बात करेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुसा नई दिल्ली में। डॉक्टर ओपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और उससे जो हमारी फसलें हैं उनकी सुरक्षा की बात। इससे पहले तो जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एकदम बरसात एकदम धूप, यही जलवायु परिवर्तन है या कुछ और है?
5: देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन का जो मौसम बदल रहा है, वो मौसम बदलने के कारण हमारी जो फसलें हैं और उनमें खरीफ की फसलों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हमने देखा है कि हमारे दिल्ली और एनसीआर के एरिया में लगभग 28 जून को बरसात आती है, लेकिन किसी कारणवश वो लगभग 8 से 10 दिन देर से हुई है और इसकी वजह से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन पे उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ज्यादा तापमान होता है या ज्यादा भारी बारिश होती है और सूखे की स्थिति भी बनती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को कम समय की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए और साथ ही जैसे मल्चिंग है या खेतों की मेड़बंदी है उसको करके हम खेतों के अंदर जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एक भारतीय योजना है भारत सरकार की, यदि हमें फसलों से नुकसान होता है तो उन फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। और इसके अलावा यदि हम देखें तो खरीफ की फसलों से जो होने वाले नुकसान हैं उनमें मुख्य रूप से जो है यदि देखें तो उसमें अनियमित वर्षा है या सूखा है, इसकी वजह से खरीफ की फसलों में नुकसान होता है। और उनमें जो मुख्य फसलें हैं उनमें जैसे धान की फसल है उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और मानसून में देरी होने से या सूखे के कारण ये फसल सूख जाती है और पैदावार में इसका भारी गिरावट आती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि अत्यधिक बारिश हो रही है या बाढ़ है, उसके अलावा भी अचानक भारी बारिश होने से या जल भराव जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं उससे फसलों की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधे नष्ट होते हैं जिससे हमें पैदावार में गिरावट आती है। यदि हम देखें कि तापमान जैसे बढ़ रहा है तो जिसको हीट वेव कहते हैं या उच्च तापमान है, इसके कारण जो परागण की प्रक्रिया है फसलों में वो भी बाधित होती है और दानों का विकास ठीक से नहीं होता है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे जैसे कि फसलों की हम सुरक्षा के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, जलवायु के अनुकूल जो किस्में हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए, जो लंबे समय तक पानी की कमी झेलने वाली या कम अवधि में तैयार होने वाली जैसे धान की फसल है, मक्का की है, बाजरे की है, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही जो जल संरक्षण है और उसका उचित प्रबंधन पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी वो खेत में ही संचित रहे और भारी बारिश की स्थिति में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ड्रेनेज की भी उचित व्यवस्था करें, यानी कि जल निकास की। जैसे भारी बारिश की स्थिति है तो इसके अलावा पानी निकालने के लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि हम देखें तो हमारे जो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है इसका भी उपयोग करें ताकि सूखे की स्थिति में जो सीमित पानी है उसका उपयोग करके हम अपनी फसलों से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी बढ़ाने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि आप जान रहे हैं और भारत सरकार भी पिछले दिनों से इस पे जोर दे रही है कि किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें और उसके द्वारा जो सुझाई गई उर्वरकों की मात्रा है उसका ही अपनी फसलों में प्रयोग करें ताकि हमारी फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। और जैसे कि जैविक खाद है, आप जानते हैं कंपोस्ट खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, इसका उपयोग करें जिससे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और उससे हमारी फसलों में ज्यादा पैदावार भी मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखें फसल विविधीकरण, जिसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इसमें पानी की कमी होने से उसमें केवल जैसे धान की फसल है उस पर निर्भर रहने की बजाय हमें अन्य खरीफ फसलों का चुनाव करना चाहिए, जिनमें जैसे दाल वाली फसलें हैं, दलहन की फसलें मूंग है, उड़द है, तिलहन है या मोटे अनाज में आप देख रहे हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन फसलों का हमें चुनाव करके हमें उनका अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके उत्पादन लेना चाहिए।
4: जैसे आपने कहा कि जैसे अभी ज्यादा एकदम बरसात हो जाती है और मान लीजिए किसी किसान ने फसल बो रखी है तो उसको क्या करना चाहिए?
5: जिस किसान ने फसल बो रखी है यदि हम देखें तो खेत में पानी ज्यादा भर जाता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें, एक तो यह है। दूसरा यह है कि यदि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उसमें जड़ें उसकी गिर जाती हैं या फसल मरने की संभावना रहती है, तो उसमें पानी का निकास जितना हो सके वो करें, और नहीं तो जैसे ही वो खेत में फसल हो जाए उससे अनाज तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जुताई करके उससे हरी खाद के लिए उसको उपयोग खेत में कर सकते हैं। साथ ही जो है यदि हम देखें कि हमारे पास अगर तालाब की व्यवस्था है कहीं नीचे की तरफ, तो उस पानी को उसमें भी निकास करके वहां पे इकट्ठा करके और हम रबी के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आसपास में बोरिंग है, कुएं हैं, उनमें जल की मात्रा बढ़ती है और वो रबी की फसलों के लिए काम आती है।
4: सर ये तो बात रहे कि जैसे बरसात है कि कोई और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बरसात नहीं हो रही है या देर से हो रही है, तो क्या ऐसी कुछ किस्मों का भी विकास किया गया है, या आप क्या सलाह देना चाहिए कि कौन सी फसलें लगाएं और उसमें किस्मों के बदल में क्या ध्यान रखें?
5: देखिए, जहाँ देखते हैं कि जहाँ हमें वर्षा की आवश्यकता है और वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है और सिंचाई के साधन भी नहीं है किसानों के पास, तो ऐसी अवस्था में उनको कम पानी वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। यदि सूखे की स्थिति पड़ती है तो उसमें हम जो है जैसे हमारी मोटे अनाज में मैंने बताया ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन फसलों को बो सकते हैं, इनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ दलहन की फसलें हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं।
4: सब जैसे कि मान लीजिए किसी ने पहले से बिजाई कर दी है और बीच में गैप आ गया काफी कि बरसात नहीं होती है, तो उस स्थिति में किसान भाई
5: उस स्थिति में किसानों को यही सलाह दी जाती है, यदि उनको लाइफ सेविंग इरिगेशन उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में अगर फसल खेत में खड़ी है और बारिश नहीं हो रही है और सूखे की स्थिति झेल रही है, तो फसल के लिए अगर अतिरिक्त सिंचाई का कहीं साधन है तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हमें बारिश का इंतजार करना ही पड़ेगा।
4: सब कभी कभी किसान भाइयों की फसल तैयार होती है और उस समय एकदम बारिश आ जाती है और ज्यादा बारिश हो जाती है, फसल गिर जाती है, कभी कभी उसमें बहुत नुकसान हो, ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करते हैं?
5: ऐसी स्थिति में यही है कि जैसे हमारी फसल तैयार है और बहुत ज्यादा बारिश हो गई है या और कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन की ऐसी कोई समस्या आ गई है जिससे कि फसल में पैदावार में नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में यही है कि एक तो भारत सरकार ने जो है एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके यदि उस फसल के लिए बीमा करवा दें तो आपको उसके नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा दी जा सकती है। और साथ ही यदि हम देखें कि ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जैसे उनको नुकसान हुआ है तो अगली फसल में फसल चक्र को अपना के या और दूसरी फसल से भी उसकी भरपाई को किया जा सकता है। दूसरे यह है कि यदि एक फसल को न करके हम विविधीकरण फसल का करें तो उसमें यह होगा कि एक फसल से यदि नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकती है, जैसे बागवानी हम कर सकते है, तो बागवानी के साथ अगर हम खेती करेंगे तो हमें जो फसल को नुकसान होता है सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से, तो वो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। और साथ ही मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका भी लाभ उठाएं और उससे भी आपको नुकसान से बचा जा सकता है।
4: जैसे फसल बीमा योजना का आपने जिक्र किया, फसल बीमा योजना अगर किसी ने फसल बिजाई करी है बीमा उसका उसी समय होता है, क्या प्रक्रिया है उसकी?
5: उसकी प्रक्रिया के लिए यही है कि वो जाके अपने पास के जो कृषि विभाग है वहाँ पे अपना आधार कार्ड और अपनी फसल का खेत का खसरा नंबर लेके उससे पास के जो कृषि अधिकारी है उनके यहाँ पे उसका पंजीकरण करवा सकते हैं और साथ ही उस फसल का नाम लिखवा सकते हैं और खेत का एरिया लिखवा सकते हैं। तो यदि किसी कारणवश सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से फसल को नुकसान होता है तो उनको उसकी भरपाई फसल सुरक्षा के तौर पर सरकार के द्वारा उनको दी जाती है, जिससे कि उनकी पैदावार से जो होने वाली आमदनी को नुकसान होता है वो भरपाई हो सकती है।
4: तो दरअसल जो फसल बीमा योजना में कुछ किसानों से भी तो किस्त पड़ती है।
5: हाँ, किस्त जैसे आती है तो वो किस्त भी उसको वो भरते हैं, उसका भी फिर टाइम होता है, यदि किसी कारणवश फसल को नुकसान होता है तो वो किस्त को फिर दूसरे सीजन में उनको उसकी रियायत दी जाती है।
4: तो जैसे जो हमारे किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा कराते हैं तो उसके लिए कहते हैं 3% देना पड़ता है, और जो किसान भाई रबी फसलों का बीमा कराते हैं उसके लिए 2%
5: देना पड़ता
4: है, और जो बागवानी फसलें हैं उसके लिए 5% तो ये प्रीमियम दे करके उनको फसल बीमा योजना मिलती है, और जब उनका कोई नुकसान चाहे फसल की बिजाई से लेकर के उनकी कटाई घर तक आने तक की जिम्मेदारी होती है, अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो जिस भी कंपनी से या भारत सरकार की कोई योजना है उसके द्वारा अगर अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसकी
5: भरपाई होती है और नुकसान से आपको कम नुकसान होता है और आपको जो है उसकी आमदनी लगभग उतनी ही होती है।
4: लेकिन हमारे किसान भाई फिर भी काफी शिकायत करते हैं कि जब उनकी फसल का नुकसान हो जाता है लेकिन उसका आकलन ठीक से नहीं किया जाता है कि नुकसान ज्यादा हो जाता है, वो कहते हैं कि

0: वहाँ पे नुकसान नहीं
1: होगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए है कि यदि आप किसान भाइयों को ये लगता है कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है और आकलन नहीं आया, तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो सरपंच के माध्यम से अपने जिले के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जो जिला के जो कृषि अधिकारी हैं या जो गांव स्तर पर जो कृषि अधिकारी काम कर रहे हैं जैसे पटवारी वगैरह, उनसे अपने आवेदन दे करके उससे अपनी फसल का आकलन सही करवा के उसका उचित बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो सब किसान भाई अपनी फसलों को जलवायु परिवर्तन से बचाए रखें और अपनी फसलों की फसल सुरक्षा सही तरीके से कर लें, इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम तो किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आजकल आप देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अनियमित बारिश होती है, या कहीं पे हमें जब जरूरत होती है तब नहीं होती है, ऐसे में बारिश होती है। तो उसके लिए बचाव के लिए यही है कि किसान भाई जो है ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे कि उन्हें नुकसान कम हो और साथ ही अपनी फसलों में ज्यादा विविधीकरण अपनाएं, फसल चक्र का पूरा उपयोग करें और बरसात के मौसम में खेतों की ऊंची ऊंची मेड़बंदी करके जल को संरक्षित करें जिससे कि खेत का पानी खेत में ही रहे और उससे अगली फसल को उनसे ज्यादा पैदावार उसकी मिल सके। तो इसके लिए और भी जो है किसान भाई हो गया कि बागवानी का चुनाव करें, पशुपालन रखें, तो उससे क्या है कि यदि हमें किसी कारणों से एक फसल से नुकसान होता है या एक व्यवसाय से, तो दूसरे व्यवसाय से उसकी भरपाई हो सकती है। तो यही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसलों का विविधीकरण करें, फसल चक्र अपनाएं और हमारी जो उन्नत कृषि प्रणालियां हैं या उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं या कृषि तकनीक है उसका उपयोग करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा फसल विविधीकरण है या जो हमारा फसलों का जो एक फसल के बाद दूसरी फसल ऐसे बोए तो उससे हमें नुकसान की कम होता है और उससे जो दूसरी फसल उससे भरपाई उसकी हो सकती है। सब्जियां लगाएं, अगर पानी ज्यादा है तो मछली पालन भी कर सकते हैं और बागवानी भी लगा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपने काफी विस्तार से बताया किस तरीके से हमारे किसान भाई जलवायु परिवर्तन से अपनी फसलों को बचाकर अपनी फसलों की फसल सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ओपी सिंह जी आप कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई से फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा, डॉक्टर ओपी सिंह से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल जी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं या बहनें हैं हमारी, वो उनके लिए एक पीएम कुसुम योजना जो बहुत ही लाभकारी है हमारी बहनों के लिए खास तौर से, कि जो उनको ये इस योजना से जो हमारी किसान बहनें हैं वो अपनी आय तो बढ़ा ही सकती हैं, साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ डीजल मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए कुल लागत का 60% तक सब्सिडी दी जाती है और इसमें हमारी जो बहनें हैं वो अपने खेतों में प्लांट लगा सकते हैं, किसान भाई बहनें जो भी खेती किसानी करते हैं और अपने अपने खेतों में जैसे बिजली पानी की दिक्कत होती है वो उसको दूर कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, यकीनन अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपकी नजदीकी कोई भी सरकारी केंद्र है या कुछ, आप जाके वहां जानकारी लें और कैसे इसका लाभ पा सकते हैं, क्या क्या इसके लिए आपको औपचारिकताएं निभानी होंगी, ये भी आपको वहां से पता चल जाएगा।
2: जी बिल्कुल, इसके लिए आपको देखिए मैं थोड़ा सा हम बता देते हैं जो हमें जानकारी है जिस बारे में, कि आपको बैंक में जो आपका खाता है वहां से आपको लोन मिल जाएगा और लोन मिलने के बाद जैसे होता है कि भाई 60% हमारी जो राज्य सरकार है वो देती है और 40% जो हमारे केंद्र सरकार है वो देती है, तो आपको कुल जैसे 3 किलोवाट का आप लगवाते हैं सोलर पैनल तो उसमें 1,08,000 के आसपास आपको गवर्नमेंट से मिल जाता है।
3: बिल्कुल, लेकिन आए इसके लिए पात्रता भी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप भारत के किसान होने चाहिए और आप कृषि भूमि के स्वामी, मतलब आपके नाम को जमीन होनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पात्रता है उसको आपको पालन करना होगा, तभी आप इस लाभ पा सकते हैं। और इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, किसान अपने राज्य की नामित कार्यान्वयन एजेंसी या राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं, जैसे सरकारी पोर्टल जो चलाए गए उसके माध्यम से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और वहां जाके आप इसका लाभ पा सकते हैं।
2: बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और आप अपने भाइयों को मनोरंजन भी करवाएंगे और सुनवाते हैं इस वक्त
3: अमित खदाना की आवाज में एक उपदेश।

सारे स्वर्गियों रे नरक का फर्ज निभाना है। संस्कार संसार चक्र करे मौका एक बहाना है। अरे सबको जगत छोड़ना रे होगा, सबको जगत छोड़ना होगा। डाकू

अभी हमारे पास सुन रहे थे अमित खदान की आवाज में ये उपदेश, और आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और उपदेश अपने भाइयों को ब्रजपाल सिंह चरोरा की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

उठाओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें आप सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली,
1: बिजनेस मैन अप्रूव।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, कैमरा, नई लाइट्स।
3: लोन
2: लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: आरबीआई कहता है
1: समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार, राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ने के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय तथा एमईएल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से विकसित ये

0: आधुनिक डिजिटल पोर्टल एआई की सहायता से निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एआई निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार अनुपालन प्रक्रिया को सरल, निगरानी को अधिक प्रभावी और एनफोर्समेंट को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजेंसी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की एआई की मदद से रियल टाइम निगरानी करेगा।
1: दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या पे एआई एनेबल्ड डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट पोर्टल है, जो कि तकनीक की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से एक बेहतर गवर्नेंस हमें एश्योर करेगा, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एश्योर करेगा। धीरे धीरे हम ये चलान भी जो है मैनुअल की जगह सीधा इस पोर्टल के माध्यम से ही उनको चलान भेजेंगे। ये इस पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में रहेगा। मैं बधाई देती हूँ डीपीसीसी को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को।
0: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी इमारत है, उनके निर्माण के दौरान निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी को नियंत्रित करने के लिए ये पहला एआई आधारित पोर्टल है।
2: आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पोल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितने भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उठती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं।
0: दिल्ली सरकार राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करेगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनके स्थान पर साफ सुथरे BS6 या कड़े उत्सर्जन नियमों का पालन करने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैप से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार पात्र नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, पात्र पुरानी यूज्ड गाड़ियों की खरीद पर 10 साल के लिए 50% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप की जा रही पात्र गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट देने की सुविधा प्रदान करेगी। इस स्कीम से पुराने कमर्शियल वाहनों के वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम का कुल बजट 9,585 करोड़ रूपये है। यह स्कीम पूरी तरह से डिजिटल नया सफर पोर्टल के जरिए लागू की जाएगी। ये स्कीम पात्र लाभार्थियों के लिए 2 साल तक खुली रहेगी। इस योजना पर परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को साफ हवा और ज्यादा मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अगले माह रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्रता सभी संबंधी मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक संकल्प नहीं बल्कि विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा जिसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो, लाभार्थी और उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन या अन्य किसी आर्थिक

0: सहायता योजना का लाभ ले रही है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जिस परिवार के पास चार पहियों का वाहन होगा उस परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कड़काडोमा अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आयोजित जागरूकता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के अपडेट की वर्तमान प्रक्रिया के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना था।
2: विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला होती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें। श्री गुप्ता ने समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पात्र नागरिक आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, युवा स्वयंसेवक तथा वरिष्ठ नागरिक इस अभियान की जानकारी को प्रत्येक घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज द्वारका स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा हुई। इसके साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली में सहकारिता विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज RCS कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान विभागीय कार्यों, योजनाओं तथा भविष्य की कार्ययोजना को लेकर अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के शहरी कायाकल्प, सुलभ आवास योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU तथा MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच 5 वर्षों के लिए एक औपचारिक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ा जाएगा। इससे कक्षा 12 के बाद विद्यार्थियों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, डिजाइन तथा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर करियर बनाने का अवसर मिलेगा।
3: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप युवाओं को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करना है तथा दिल्ली को देश की उभरती हुई ऑरेंज इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतर्गत MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड पाठ्यक्रम तैयार करेगा तथा विद्यार्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। DSEU परिसर परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये पहले समय की आवश्यकता के अनुरूप और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री तथा उद्योग समर्थित नीति निर्माण के माध्यम से युवाओं को भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समझौते के फलस्वरूप

0: उप छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। रिशु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डीयू कुल सचिव डॉ विकास गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर हाइजीन, साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, इंटर्नशिप तथा छात्र सहभागिता को

0: पुराने विद्यालय के छात्रों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को संसदीय कामकाज, विधायी प्रक्रियाओं और जनसेवा की जिम्मेदारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1100 पौधे लगाए गए। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने दिल्लीवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऋषभगढ़ को 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली के करकरडूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: बचत सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो, इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो
3: इंजेक्शन। आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका, और कार्यक्रम गीत मालिका में मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ।

दोस्तों, प्रार्थना केवल मंदिरों में नहीं होती बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में भी बसती है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

तो ये गीत हमने लिया था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से, आवाज थी लता मंगेशकर और साथियों की। दोस्तों, जब दिल विनम्र हो और मन शांत, तब हर रास्ता आसान लगने लगता है। पेश है एक और अमर प्रार्थना।

दोस्तों ये गीत हमने लिया था फिल्म सीमा से, आवाज थी मन्ना डे जी की और साथियों की। दोस्तों ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं, जब भी मन डगमगाए तो विश्वास की नाव ही किनारे तक पहुंच जाती है।

श्रोतो, आपने ये गीत सुना फिल्म थी मेरा नाम जोकर, आवाज मुकेश जी की। श्रोतो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

खुद और ये गीत हमने लिया था फिल्म भाभी की चूड़ियां से। आवाज लता मंगेशकर की। श्रोताओ चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

जब अंबर से बरखा बरसे।

था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से आवाज थी लता मंगेशकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। श्रोता, सत्य, शिव और सुंदर, यही जीवन का सार है। आइए सुनते हैं एक और कालजयी रचना।

ये भजन आपने सुना हरिओम शरण जी की और साथियों की आवाज में। दोस्तों, भक्ति में सबसे बड़ा धन है सच्ची श्रद्धा। आइए सुनते हैं ये सदाबहार भजन।

तो ये गीत हमने लिया था फिल्म गोपी से, आवाज थी मोहम्मद रफी जी की। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ और इसी आखिरी प्रस्तुति के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की।

0: श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मालिका संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमरीका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविन्द्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
5: प्रोविजनली वी आर लुकिंग एट ए 10% इंक्रीज।
6: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
5: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
7: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेश शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
8: अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप

0: मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. The electronic goods exports increased by around 19% from $4.14 billion in June last year to $4.93 billion in June this year. India's retail inflation accelerated to 4.38% year-on-year

मीडियम वेव से खबर 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं तलत अजीज।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज के फनकार थे तलत अजीज। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडेश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। जबकि 9:45 हो चुके हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के मुतवाजन और तजारती लिहाज से मुआसिर तजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सिमाही में भारत की मजमू बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज कर गई, जो गुजश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और चार दीगर अफराद को 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बाइस खिते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। इसके साथ उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीमें एक ऐसे तजारती माहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजन और तजारती एतबार से बामाना हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सार्फिन के लिए हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजन और मुफीद मुआहदे के लिए अपने अज्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राबते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स और तजारत और कारोबार के वजीर कार्लोस क्यूर्पो कबालेरो ने से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिल तरदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तराआत के मौजूदात पर भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजाद तजारती माहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तजारती ताउन को मजीद उसत देने के तरीकेकार पर गौर खोज किया। जनाब गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के 5 रोजा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरकारी सेक्टर के बैंकों पर जोर दिया है कि बैरून मुल्क भारतीयों एनआरआई तक अपनी रसाई को मजीद बढ़ाएं और उनके लिए जिद्दत तराजी पर मबनी नई जमा पूंजी स्कीमें मुतारिफ कराएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान से गैर मुल्की करेंसी एनआरआई बैंक डिपॉजिट्स और गैर मुल्की करेंसी कर्जों के तबादले के इकदाम के सिलसिले में बातचीत की। वजीर खजाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनआरआई बिरादरी से राबते को मजीद बढ़ाया जाए ताकि गैर मुल्की सरमाया और हुकूम की आमद का सिलसिला जारी रहे। मीटिंग के दौरान बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों के सरबराहान ने वजीर खजाना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तबादले की सहूलत की स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों और सरकारी मालियाती इदारों की सरगर्म शिरकत से यह साबित होता है कि तबादले की सहूलतें मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की आमद को बढ़ाने में मुअस्सर रोल अदा कर रही हैं। इस साल अप्रैल से जून की मुद्दत के दौरान भारत की मजमूई बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुजश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73.45 ارب امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے۔ جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات، انجینئرنگ کا ساز و سامان، نامیاتی وغیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں۔ الیکٹرانک ساز و سامان کے برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں۔ اس طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا۔ جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور چار دیگر افراد کو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا۔ عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافعت پھیلانے، فسادات، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانہ۔ یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت کے عام آدمی پارٹی کے کونسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا۔ اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا۔ 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور 10 دیگر ملزمان کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کی احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے، جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی راڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی

0: है फौरन आपको ये एनर्जी देता है, तवानाई देता है और आपको तरोताजा भी कर देता है। चलिए तो बटर मिल्क की बात भी कर लेते हैं। छाछ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, भुने हुए जीरे और पुदीने का पाउडर डालकर बनाई गई छाछ निजामे हाजमा के लिए बहुत ही उम्दा होती है। और गर्मियों में दोनों तरह के स्नैक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नमकीन हो या फिर मीठे हो, और दूध या दही से भी कई स्नैक्स आप बना सकते हैं। उसमें कई फल और सब्जियां मिलाकर और दही का इस्तेमाल, उस दही उसमें शामिल करके और काला नमक और काली मिर्च का सिर्फ इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं। अगर डालना चाहें तो भुना हुआ जीरा ऊपर से अगर आप डालें तो ये तमाम चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होती हैं। गर्मी के मौसम में आपके निजाम हाजमा को भी दुरुस्त रखती हैं, आपके जिस्म को ठंडक भी देती हैं और आपको सुकून देती हैं, गर्मी से राहत दिलाने में मददगार साबित होते हैं ये तमाम तरह के स्नैक्स जो आप गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अपना अपना मिजाज है, लोग तली भुनी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं चूंकि हम यहाँ बात सेहत के हवाले से कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी सेहत भी बनी रहे और आपको जायका भी मिले। और ठंडी जो स्नैक्स की हमने बात की, अगर किसी को फ्रिज के रखे हुए ठंडे आइटम से कोई दुश्वारी या परेशानी है तो जाहिर सी बात है वो इस चीज से गुरेज करें, वो दूसरी तरीके से बनाए गए स्नैक्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मखाना है, भुने हुए मखाने, वो आप इस्तेमाल कीजिए तो कई मुतबादिल आपको मिल जाएंगे। तो बहरकैफ ये बातें थी आपकी चंद सेहत के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है अदबी मैगजीन आईना। आज का मौजू है उर्दू की गुम होती असनाफ।
1: सामीन, आप सबका इस्तकबाल है ऑल इंडिया रेडियो के आज के इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान है ना। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो असातज़ा इकराम जिनका ताल्लुक शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अशरफ साहब, फिक्शन और फिक्शन तनकीद के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है, आपका ताल्लुक शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा, वहीं से सुपदोश हुए। आपकी बहुत सी अहम किताबें जिनमें से बरसगीर में उर्दू नावल और उर्दू अफसाना, ये दो अलग अलग किताबें, और ख्वाजा अहमद अब्बास पर एक मोनोग्राफ साहित्य अकेडमी से शाया हुआ। अभी हालिया दिनों में आप की किताब साहिब लुधियानवी पे आई है, तो आपको सर मुबारक हो और आपका इस्तकबाल है उर्दू सर्विस के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा खालिद अशरफ साहब ने तराजिम भी किए आपने, और आज हमारे ये मेहमान मौजूद हैं जिस अहम मौजू पे हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है उर्दू की गुम होती असनाफ। हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, इनका ताल्लुक भी शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और मेरी खुशबख्ती है कि ये दोनों असातज़ा कराम आज मौजूद हैं स्टूडियो में, हम इनसे बहुत सीखेंगे और सीखते रहे हैं इनकी तहरीरों से। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब यानी उर्दू शेर व अदब, खुसूसन उर्दू ड्रामे की तारीख व तनकीद और उर्दू थिएटर से के हवाले से एक मारूफ नाम है, और आपकी भी बहुत सी किताबें जिसमें उर्दू ड्रामा फन और तारीख और तज्जिया जो हालिया दिनों में भी कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान से शाया हुई, पहले जो किताबें आई हिंदुस्तानी नुक्कड़ नाटक और उसकी समाजी मानवियत, बंगाल में उर्दू नुक्कड़ नाटक, फिर मशरकी हिंद में उर्दू नुक्कड़ नाटक, दास्तान गोई पे आपकी दो किताबें यानी उसके फन पर और उर्दू और हिंदी दोनों में, उसके अलावा यानी तराजिम आपने किए, ड्रामे इब्सन हेनरी के इब्सन के तीन ड्रामों का उर्दू तर्जमा किया, सितम की इंतहा क्या है उनवान से हिंदी के ड्रामों का उर्दू में तर्जमा किया। तो इस तरह से यानी ये जो आज के मेहमानान हैं कि शेर व अदब में, फिक्शन में, ड्रामे में और ट्रांसलेशन में भी इक्वली, तो हम दोनों मेहमान का समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया।
1: आपका भी सर इस्तकबाल है और गुजरू करते हैं उर्दू की गुम होती असनाफ पे। जाहिर है कि नसरी असनाफ और शेरी असनाफ उर्दू की हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो अब मादूम हो रही हैं, तो हम अपने असातज़ा से जानेंगे और पहले शायरी की यानी गुम होती असनाफ।
2: यहाँ पहले शायरी पे गुफ्तगू हो सकती है और फिर नसर पे गुफ्तगू हो सकती है।
1: यस सर, तो यानी शेरी असनाफ में बहुत से ऐसे हैं, मसलन मरसिया या वासोख्त, मसनवी, शहराशोक, तो हम जानना चाहेंगे कि इस पर यानी खालिद अशरफ साहब से پہلے کے شریعہ اصناف کی جو

0: یعنی گم ہوتی اصناف ہیں اردو کی، تو اس پر آپ اظہار خیال فرمائیں.
1: جی جیسا کہ اندازہ ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شعری اصناف میں زوال زیادہ ہوا ہے بنسبت نثری اصناف کے، اور ہماری جو کلاسیکل اصناف تھی جو ہم پڑھتے سنتے آئے، اور فارسی سے آئی تھی زیادہ تو ہمارے یہاں چیزیں، مثنوی، قصیدہ، حجو، شعر آشوب، اور کسی حد تک مرثیہ تھوڑا بہت لکھا جا رہا ہے آج بھی، اس لیے مرثیہ کو تھوڑا سا الگ رکھتا ہوں میں. اور پھر جو چھوٹی اصناف تھیں، واسوخ جیسا کہ آپ نے فرمایا، جی. اور ربائی، حالانکہ ربائی کوئی بہت پاپولر صنف کبھی نہیں رہی. تو اور ادھر نثر میں دیکھیں تو داستان ہے جو ایک میٹا نیریٹو جسے کہتے ہیں نا،
2: جی جی،
1: مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ داستان سے ہی سارا فکشن نکلا ہے، ایمرج ہوا ہے. داستان ظاہر ہے کہ اب لکھی نہیں آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے داستانی اسلوب اپنایا جیسے انتظار حسین صاحب وغیرہ نے، لیکن وہ جو موضوعات کی سطح پر جو زوال ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزوں کے آنے کی وجہ سے، انگریزوں کے آنے سے جو سماجی حالات تبدیل ہوئے، سیاسی حالات تبدیل ہوئے، انہوں نے فن اور آرٹس اور لٹریچر میں بھی بنیادی تبدیلیاں باقاعدہ ادارے بنا کر کرائیں، باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ بھی دی انہوں نے. تو ایک نئی طرح کا ماحول، اور اس نئی طرح کے ماحول کو ظاہر کرنے والا، ڈپکٹ کرنے والا لٹریچر اور اصناف وجود میں آتی ہیں. تو میرے خیال میں شعری اصناف پہ پہلے جی بات کی جا سکتی ہے.
2: جی جی جناب، بجا فرما رہے ہیں آپ. اور شعری اصناف میں جیسے جو کچھ اصناف ہمیں معدوم ہوتی ہوئی یا گمشدہ دکھ رہی ہیں، اس میں ہم نے بہت سی اصناف کو یہ کہہ دیا کہ بہت پہلے ہی وہ گمشدہ ہو گئی. جیسے اکثر مثنویوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مثنوی میں ہم شوق کے بعد مثنوی کا ذکر بھی نہیں آتا ہے کہ کن لوگوں نے مثنویاں لکھیں، کیا لکھیں. تو اور زیادہ تر جو مثنوی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں طویل مثنوی کا ہی ہم ذکر کرتے ہیں، جبکہ مختصر مثنویاں بھی لکھی گئیں. کہ شوق کے بعد کو بھی اگر ہم دیکھیں، زیادہ تر ہم ذکر کرتے ہیں یا جو کورسز میں شامل ہیں وہ سیر البیان، گلزار نسیم، شوق کی شعلہ عشق، تین چار مثنویاں ہیں، یا میر کی کچھ مثنویاں کہیں شامل ہیں، یا قطب مشتری دکن سے ہے، یا قدم راؤ کا ذکر ہو جاتا ہے، یا علی نامہ کا ذکر ہو جاتا ہے. تو لیکن بعد میں جو لوگ ہیں ان کے زمانے کے بعد کے لوگ، ان لوگوں بھی مثنویاں لکھیں اور مختصر مثنویاں بھی لکھی گئیں. اور مثنوی کے ساتھ دراصل فارم کا معاملہ ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ دوسرے شعر سے مختلف قافیہ اور ردیف میں ہوتا ہے، اور دونوں مصرے جو ہے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں. اس فارم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسن آزاد نے مثنویاں لکھی ہیں، موسم زمستان، یا شب قدر، یا ابر کرم، یا حالی نے مثنویاں لکھی ہیں، برخاروت، شکوہ ہند، چپکی داد. اسماعیل میرٹھی نے نظم کے فارم میں مثنویاں لکھی ہیں، اور بچوں کے لیے مثنویاں لکھی ہیں جو کہ اس طرح سے نہیں لکھی گئی تھی. کہ اسماعیل میرٹھی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مثنوی کے فارم میں ان کی وہ نظمیں ملتی ہیں، جیسے خدا کی تعریف میں ہے، یا اسلم کی بلی ہے، یا ہوا چلی ہے، یا برسات کا موسم ہے، ہماری گائے ہے. تو یہ فارم وہی مثنوی کا ہے لیکن مختصر ہے، لیکن اس کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہماری تنقید میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اصناف جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ایون شوق قدوئی نے بہار اور ہندوستان کی برسات مثنوی لکھی ہے. نظم تما توائی کی ایک چھوٹی سی مثنوی ہمیں نظر آتی ہے. کیفی آزمی انہیں مثنوی کے فارم میں لکھی ہے، یا علامہ اقبال نے لکھی ہے مثنویاں، جوش کی مثنویاں ہیں جو کہ ہم آزادی کے بعد تک بھی ہم آ رہے ہیں کہ جوش کی مثنویاں ہیں، کہ جمنا کے کنارے، جنگل کی شہزادی، یا اشک اولی، یا گنگا کے گھاٹ پر. تو اس طرح کی مثنوی حافظ جالندھری کی مثنویاں ہیں، شاد عظیم آبادی نے ایک مثنوی مادر ہند لکھی تھی، رضیہ کیفی کی مثنوی ایک ہے جگ بیتی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو آزادی کے بعد تک بھی ہمیں مثنویاں نظر آتی ہیں، لیکن دراصل ہماری نظر اس طرف نہیں گئی ہے، یا اس کو ہم نے اس طرح سے طالب علموں کے لیے یا عام قارئین کے لیے ہم نے اس پر گفتگو اس طرح سے نہیں کی ہے. تو اس لیے بھی لگتا ہے کہ یہ معدوم ہو گئی ہیں، یا گمشدہ ہیں، یا آج کی تاریخ میں نہیں لکھی جا رہی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ جو طویل مثنویاں لکھی گئیں، اس طرح کی مثنویاں آج اب نہیں لکھی جا رہی ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ اب وہ تہذیب و ثقافت ہمارے ساتھ نہیں ہے.
1: جی
2: اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی طویل لکھیں، اب ہمارے پاس اتنا مطالعہ نہیں ہے، اتنا مشاہدہ نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ بہت جلدی میں ہیں اب، تو اب مختصر لکھ رہے ہیں ہم، اور ہر چیز کی ہمیں جلدی ہے آج کے دور میں یا پچھلے 20-25 برسوں میں، اور ہمارے پاس چیلنجز بھی زیادہ ہیں. कि आप रोजी रोटी का चैलेंज है, आपके पास वक्त की किल्लत है, आपके पास काम बहुत सारे अब हैं, तो उस वजह से भी ये तमाम जो असनाफ है या कसीदे को ही अगर हम लेते हैं तो कसीदे में भी जो कसीदे वो जमाना था वो लिखे गए। अब वो उस तरह का जमाना भी नहीं है, उस तरह के न तो नवाब रहे, न उस तरह के रऊसा रहे, न उस तरह के वजीफा देने वाले लोग रहे कि वजीफा दें और उनके लिए कसीदे लिखे जाएं, या मरसिया जो जिस तरह से जिस जो अकीदत पहले हुआ करती थी, जिस तरह के हमारा मजहब से लगाव हुआ करता था या उस चीज से लगाव होता था, अब हमारे अंदर वो कमी आती जा रही है।
1: जी, एक दो बातें
2: वजह से भी वो
1: पहले मसनवी के हवाले से
2: जी
1: एक बात जो मुझे अहम नजर आती है कि मसनवी का जो मौजू था ना, और मेरे ख्याल में एक ही मौजू हुआ करता था मसनवी का, वो होता था हुस्न इश्क,
2: हुस्न इश्क की दास्तान।
1: और मैं कहीं पढ़ रहा था और काफी हद तक बात सही भी है कि जो मौजू दास्तान का था वही नज्म में मसनवी का था, वही मौजू है शहजादा और ये सब इश्क। तो अब वो जो पूरा कैनन था ना लिटरेचर का
0: जी,
1: हुस्न इश्क की बातें हो रही है, उसमें माफूकुल फितरी अनासिर भी आ रहे हैं, जिन भूत परी भी आ रहे हैं
2: जी जी,
1: एक ऐसी जगह की सैर आ रही है जो बहुत दूर है, जंगल बियाबान है, मुहिम जुई
0: जी,
1: और जंगें मुकाबले जेवरात ब्याह शादियां खाने लिबास, वो पूरा जो मौजूआती स्ट्रक्चर था वो तब्दील हुआ
2: बिल्कुल।
1: और जैसा कि आपने फरमाया कि मसनवी आज भी लिखी जा रही है, बेशक लिखी जा रही है, तो एक बात तो आपने फरमाई कि मसनवी का जो हजम है उसकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई
2: बिल्कुल।
1: अब मसनवी लिखी जा रही है 50 शेर की
2: जी,
1: 20 शेर की, मेरे ख्याल में 100 शेर से आगे तो कोई आजकल जान नहीं होता होगा। पुरानी मसनवी जो है हमारी वो तो सैकड़ों में है
2: हजारों में अशआर हैं, हजारों तक भी है। उसमें अभी एक तवील मसनवी आई थी गजनफर साहब की, बहुत तवील मसनवी थी वो भी। तो अब जिनके पास वक्त है और मुशाहिदा है और चूंकि वो फिक्शन निगार हैं तो उनके पास वो मंजर निगारी का भी फन है उनके पास, और मसनवी में जो है मंजर निगारी जो हुआ करती थी, गुजार नसीम असरुल बयान जो है जो हम पढ़ते हैं, और एक एक मंजर की जो तफसील है, फूलों का जिक्र है, शबनम का जिक्र है, पत्तों का जिक्र है, यहां तक कि जब हम बारिश में भीग रहे हैं उसमें बदन पर जो बूंदे हैं उसका जिस तरह से और जिस खूबसूरती से जिक्र है, तो अब वो मुशाहिदा भी हमारे पास उस तरह का ये नहीं है, लेकिन लिखी जा रही है।
1: वो जमालियात भी मेरे ख्याल में बदल गई है। आज जब हम स्टूडेंट्स को ये पुरानी जमालियात वाली चीजें पढ़ाते हैं कि हिजर है, विशाल है, इश्क है, इंतजार करना है
2: जी,
1: और सितम है बहुत तरह के, रकीब है, तो वो थीम भी बदला है
0: जी।
1: तो आज की मसनवियां कैफी आजमी की मसनवी खासतौर पर अल्लामा इकबाल की मसनवियां, जोशी मसनवियां,
2: इकबाल की बहुत मजे से है, खुफ्तगान ख्वाब से इस्तफ़ार या सैयद की लौह तुर्बत पर मसनवी के फॉर्म में है वो पूरा, इंसान और बज़्म कुदरत की ये है। और लेकिन एक जो आपने बजा फरमाया कि अब जो हमारी तहजीब बदली है, हमारा सकाफत बदला है, और वो चीजें रही नहीं मौजू, यही वजह है कि शहराशो गायब हो गया बिल्कुल, अब तो बिल्कुल गायब हो गया, हज गायब हो गया, हज जो अब लिखे जा रहे हैं उसमें तहजीब कहीं नहीं है, जाती चीजें हो रही है हज के नाम पर, लेकिन वो तहजीब नहीं आ रही है जो उस वक्त तहजीब हुआ करती थी कि आप सौदा के हज को
0: देखा,
2: उस जमाने में, एक जमाने में खास लखनऊ के जमाने में वो आई
1: जटली की हजियात जिस तरह की हुआ
2: जो जिस तरह की हुआ करती थी, और रिख्ती तो एक खास दौर में आई और वहीं खत्म हो गई,
1: वो वहीं
2: गायब हो गई, तो वो तो वहीं खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब जिस तरह की जफर जटली के हैं या सौदा ने जिस तरह की लिखी है, हजवी अशहर अशोक
1: ने
2: लिखे हैं, तो अब वो तहजीब भी नहीं है, वो जहन भी नहीं है, और हम उतने खुले दिल के भी अब नहीं है, हम सीधे जात पर हमला करते हैं, हम समाज पर ये नहीं, तो इसलिए उस तरह की चीजें अब नहीं आ रही हैं, अगर वो समाज शायद बने या उस तरह के लोग हों। दूसरी चीज की ये जो शायरी की ये तमाम असनाफ जो गुम हो रही हैं या कम हो रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आज के तख्लीककार हैं, उसके तीन वजूहात मुझे नजर आए। एक तो ये कि अब ऐसे बुजुर्ग हमारे पास नहीं है जिनके पास बैठकर या जो हमारा कान पकड़ करके हमें जबान, हमें तहजीब और हमें सिंफ के बारे में इल्म दे सके।
1: वो जो समाजी तश्कील थी,
2: वो तश्कील थी, तो वो बुजुर्ग भी अब हमारे पास नहीं है, और जो लोग अभी हमसे दो नस्ल पहले, एक नस्ल पहले थे, वो खुद के पर मरकूज रहकर रह गए, उन्होंने तरबियत नहीं की
1: जी।
2: दूसरे कि अब वो समाज नहीं है हमारे पास, जो तहजीब जो सकाफत हुआ करता था, नशिस्तों बर्खास्त हुआ करती थी, वो टोकने वाले लोग नहीं है कि पहले हम लोग भी जब बच्चे थे तो अपने गांव के, समाज के, शहर मोहल्ले के कोई भी शख्स अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो तो
1: गलत
2: बोल दिया तो उसकी तस्दीक करते थे,
1: बुरा माना जाता था,
2: अब वो लोग भी नहीं रहे, और तीसरी जो हम लोग हैं कि वो बहुत जल्दी में है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज बगैर पढ़े हुए बगैर किए वो जल्दी से जल्दी हम मशहूर होना चाहते हैं, इसलिए जो इस तरह की समाजी और तहजीबी चीजें हैं उस तरफ हमारी तवज्जो उस तरह से नहीं जा रही है, न हमें अपने बुजुर्गों से मिली, न हमारे अपनी नस्ल ने दिया और न हमारे समाज उस तरह से अब जो बदल रहा है, बदलता हुआ समाज है, हमारा जहन है, ये तीनों वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी समाजी चीजें और ये जो हमारे मस्बत अकदार थे उसको हम खो रहे हैं और वो गुम हो रही है।
1: एक बार डॉक्टर साहब और मेरे जहन में आती है,
0: ये तो असबाब पे गुफ्तगू हुई हमारे साथ, यानी असनाफ जो बहुत वजह आपने बताई इस यानी जमीन में सिन्फ और हयात के माबैन जो फर्क है वो भी कहीं ना कहीं अहम है।
1: जी
0: है ना, जैसे हम देखें कि मर्सिया निसाब में तो शामिल है लेकिन अब उस तरह से उस तरह के और उसमें आर के मर्सिये नहीं लिखे जा रहे, या कसीदे का जैसा आपने फरमाया कि वो और नहीं है, आसरी मानवियत का भी एक ताल्लुक है कि कसीदे खास वक्त में है, अब वो कसीदे का चूंकि माहौल नहीं है इसलिए भी, लेकिन निसाबी जरूरत के तहत हम जैसे नस्ली असनाफ पे भी आएंगे तो ये होगा कि दास्तान, अब उसके बगैर हम नॉवल को या फिक्शन को नहीं समझते, तो वो बुनियाद अहमियत बाकी रहेगी लेकिन अब लिखी नहीं जा रही। शायरी पर अगर और कुछ आप
1: जी हाँ, एक बात जो मैं अर्ज कर रहा था बराबर, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जदीद नज्म जो है वो सारी इन शेरी असनाफ के लिए बहुत नुकसानदेह कहूं या क्या लो इस्तेमाल करूं, फैटल जो वर्ड है इंग्लिश वो साबित हुई, और जदीद नज्म जाहिर है कि हाल ही से शुरू होती है, फिर नूनिम राशिद, अख्तरुल ईमान वगैरह, कुछ शायरों ने तो हमारे यहां बाकायदा गजल को मतरूक किया।
0: जी उसकी पूरी
1: तारीफ, मसनवी वगैरह तो गई और गजल का तो खैर कुछ नहीं बिगाड़ सके, गजल चलती रही, गजल को
0: सख्जान
1: साबित हुई, लेकिन यह है कि नज्म की जो तसलसल है और नज्म का जो एक बुनियादी ख्याल है, आइडिया जिसे कहते हैं, मसनवी में या कसीदे में या मरसिये में, मरसिये को मैं जरा अलग रखता हूँ कि मरसिये जो मामला अकीदत का है, मसनवी या कसीदे की बात करता हूँ खासतौर पर, वो जो बुनियादी आइडिया था ना जिंदगी का और इंसान का और आपस के रिश्तों का, वो बदला है जदीद जिंदगी में। जदीद जिंदगी जैसे कि आपने फरमाया कि जिंदगी बहुत तेज रफ्तार हो गई है और बुजुर्गों के पास बैठने का हमारे पास वक्त ही नहीं है, दरअसल बुजुर्गों के पास तो वक्त है क्योंकि मैं चूंकि खुद बुजुर्ग हूं इसलिए मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन बुजुर्गों की सुनने वाला कोई नहीं, आज हालत ये हो गई है, बुजुर्ग जो है बहुत आइसोलेशन का शिकार है। दूसरा यह है कि किसी की तस्वीर करना या किसी को टोकना ये अब ऐप में शामिल है, आप लाइक करते रहिए बस, एक दिन में 200 बार लाइक कीजिए, 300 बार लाइक कीजिए और लोग जो है लाइक इकट्ठे करते रहते हैं, खुश होते हैं उससे। तो जो ख्याल है ना, ख्याल की जदीदकारी हुई है, ख्याल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है कि अब अच्छी शायरी वो है जिसके अंदर कोई बड़ा आइडिया है, ना कि हैयत, ना हुस्न भी गया,
0: अच्छा
1: खूबसूरती भी गई, इश्क भी गया, हिजर भी गया, विशाल भी गया, अच्छे लिबास भी गए, अच्छे खाने भी गए, अब आइडिया, इस आइडिया ने जहां मतलब मैं कहूंगा कि शायरी जो है दिल से जहन की तरफ ट्रांसफर हुई है,
0: अच्छा।
1: और इसमें नुकसान हुआ है हमारी जमालियात का,
2: बिल्कुल।
1: अब जब पुराने शेर हम पढ़ते हैं सुनते थे, मसले के शेर सुनते थे, तो शेर सुन के सर ढूंढते थे हम और बार बार पढ़वाते थे, पढ़ते थे,
2: बिल्कुल।
1: वो अब नज्म में कैफियत नहीं रही, नज्म है नज्म बहुत अच्छी
2: चीज है, नज्म
0: नहीं
2: है, आजाद नज्म हो गई,
1: उसका तो अभी तय नहीं हुआ कि वो नस्र है या
2: शायरी है,
1: बहुत सारी चीजें तो क्या है,
2: लेकिन गजल का जो मामला है उसमें मौजू के साथ साथ उसका फॉर्म भी है और मौजू उसका इश्क है, अब और बात है कि और भी चीजें हैं,
1: लेकिन आज की गजल में बिल्कुल नहीं है,
2: दूसरी तरह का इश्क हो गया, अब दूसरी तरह का इश्क हो गया है वो। और अगर हम नस्र की बात करते हैं जैसा कि अभी जिक्र आया कि दास्तान ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ये और बात है कि 2005 से एक नई दास्तान का सिलसिला शुरू हुआ है, जो उन दास्तान की तलखीस पहले पेश की गई, जो पेश की जा रही हैं, नई दास्तानें भी लिखी गई हैं,
1: ये दास्तान गोई आप कर रहे हैं,
2: दास्तान गोई जो मैं तो उसमें इन्वॉल्व हूं, तो उस दास्तान दरअसल वो उसलूब जो था, वो जादू, वो रज्म, वो बज्म,
1: जंगे,
2: वो हैरत, हाँ, तो उन चीजों को अभी भी पेश कर रहे हैं, अब छोटी छोटी दास्तानें, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, तो दास्तान का उसलूब अपनाया जा रहा है, उसका फॉर्म अपनाया जा रहा है, लेकिन अब वो उस तरह के बयान जो है तवील नहीं हो पा रहे,
1: वो तफसीलात जो थी,
2: वो तफसीलात जो है वो गायब हो गई हैं, तो एक तरह से जो असल दास्तान थी वो तो अब गायब हो गई है, लेकिन एक नए फॉर्म में नए तरीके की दास्तान
1: की जमालियात को नुकसान पहुंचा, शायरी की जमालियात को नुकसान पहुंचा, बदला
2: है क्या मामला, वो हमारी संजीदगी का ही मामला है कि जैसे हम बहुत बाद के सिंफ को भी अगर हम लेते हैं, जैसे खाका है
1: जी,
2: अब खाका लिखना बहुत जोखिम का काम भी है,
1: हाँ दुश्मनी के खतरे बहुत हैं,
2: बहुत खतरे हैं उसमें, और आपके मुशाहदे का इम्तिहान भी है, मुशाहदे का और आपकी ज़हानत का दोनों का,
1: जुज़ियात
2: कि जिस तरह से आपने मुशाहदा एक शख्स को देखा है जो आपके जहन में उनको देख करके आता है और जो उनके बारे में आप जानते हैं, उनको ईमानदारी से पेश कर देना। और अब क्या है कि हम अपने अपने छोटे छोटे मफाद देखने लगे हैं,

0: लैला के खतूत मजनू की डायरी हम अगर नॉवेल पढ़ते हैं तो खतूत के फॉर्म में लिखे गए, अब कहां उस तरह के तजुर्बे हो रहे हैं, वो फॉर्म है नॉवेल लेकिन फॉर्म उसका खत है
1: जी,
0: या डायरी के फॉर्म में नॉवेल लिखे गए रपोताज के फॉर्म में, रपोताज तो बिल्कुल खत्म
2: हो गया,
0: रपोताज का मामला बिल्कुल हो गया तारीख के जमाने में शुरू हुआ जैसे, और लेकिन अभी भी रपोताज कुछ लिखे गए हैं। एक अनिश शफाक साहब का रपोताज मैंने पढ़ा,
2: अच्छा,
0: बहुत खूबसूरत, खुशबुए खाक,
2: भोपाल
0: में एक 2013 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत भवन में, और उसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे, लिटरेचर के आदमी सिर्फ आए थे, उसका बहुत खूबसूरत रुपताज अनिश अशफाक साहब ने लिखा है खुशबू खाक की। इसमें पिछले दिनों मैं रुपताज कुछ पढ़ रहा था, तो जैसे 2002 में एक रुपताज आया था यादों के जुगनू, नई मनी साहब का रुपताज था, 2005 में
2: कलकत्ते
0: वाले जो
2: है,
0: फिर एक गालिब के शहर में एक शब्बीर अहमद साहब है, दिल्ली पर का सफर था उनका, उसका रुपताज है, या मुर्शिदाबाद पर एक रुपताज है, मुर्शिदाबाद में एक दिन नई मनी साहब का। तो इस तरह से मुख्तलिफ शहर के हवाले से जो अब नया शहर है कि दिल्ली आज क्या है, उसके हवाले से इस तरह के जो रपोताज हैं, या भोपाल में वो कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह के वर्ल्ड लिटरेचर लिखा जा रहा है, तो उन रपोताज से बहुत खबरें मिलती थी, बहुत मदद होती थी हमें।
2: अच्छा, एक बात और ध्यान में आती है मेरे
1: जी,
2: क्या तजर्बात होने बंद हो गए हैं हमारे यहाँ?
0: बंद तो नहीं, बहुत कम हो गए हैं,
1: कम
2: तजर्बे हमारे यहाँ कम हो रहे हैं,
0: बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने सोचने का वक्त नहीं है, हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं सोचने में।
1: यानी ये जो गुफ्तगू असातजा ने की उसका ये मतलब कि चाहे वो शेरी असनाफ हो या नसरी असनाफ हो, तो कहीं ये तो नहीं कि जो मादूम हो रही हैं, गुम हो रही हैं उन असनाफ में, चाहे वो शेरी हो या नसरी, कहीं ये तो नहीं कि यानी जो जिसको हम रूह असर कहें या असरी हिस्सियत कहें, तो उससे कोई ताल्लुक है क्या?
2: गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक, वो बदली है
1: जी,
2: वो बदली है,
1: क्योंकि अफसाने और नॉवेल में वो है और दास्तान जैसा अभी आप फरमा रहे थे, तो कहीं इसको ये समझा जाए कि
2: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, मैं चूंकि फिक्शन थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ
1: जी सर,
2: फिक्शन जो है वो ही अल्टीमेट है
1: जी।
2: फिक्शन एक ऐसी सिंफ है, इतनी बड़ी सिंफ हो गई है, उसमें नाविल अफसाना दोनों शामिल होते हैं, नाविलेट भी आता है, कि दूसरी जितनी भी असनाफ है, नसरी असनाफ खासतौर पर, अब फिक्शन के आगे उनका चिराग नहीं जलता, माफ कीजिएगा। और एक बात और है कि फिक्शन में बहुत ज्यादा तजर्बात कर नहीं पाए लोग, अब जैसे जदीदियत की तहरीक चली जा रही है कि बड़ी तहरीक थी, और जदीदियत में अफसाने भी लिखे गए, कुछ अफसाने समझ में आए, कुछ में तजरीद एब्स्ट्रैक्शन रहा, कुछ में नए, लेकिन नावल के सतह पर कोई तजर्बा कर नहीं पाए। नावल अभी भी बयानिया में चल रहा है, और खासतौर पर फारूकी साहब का नावल कई चांद थे सर आजमा, वो बिल्कुल एक क्लासिकल तर्ज का बयानिया है, उसमें कोई अलामत, कोई एब्स्ट्रैक्शन, कोई तजरीद किसी तरह का नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिक्शन जो है मुस्तकबिल की जो सिंफ है, और आज की सिंफ जो है सबसे ज्यादा फिक्शन है, ये मेरा एक जाती ख्याल है।
0: नहीं, इसकी वजह एक जो मुझे नजर आती है कि शायद फिक्शन लिखना सबसे आसान है, इसलिए ज्यादा लिखा जा रहा है, मुश्किल फन की तरफ, मुश्किल पसंदी जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल पसंदी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जैसे एक सिंफ हमारे यहाँ शायरी में हुआ करती थी बारहमासा,
2: बारहमासा जी,
0: अब तो बिल्कुल ही एक जमाने से गायब हो गई है वो
2: बारहमासा,
0: बस उसके बाद कोई बारहमासा अब नजर नहीं आया, नजर आ रहा है ये। तो चूंकि मुश्किल काम करने के लिए वक्त चाहिए, सोचने में पहले वक्त चाहिए, क्योंकि सोचते हैं पहले, बहुत सोचते हैं फिर लिखते हैं। हालांकि मंटो ने बेदी के लिए कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत सबसे बड़ा ऐब यही है कि तुम लिखने से पहले सोचते हो, लिखते वक्त सोचते हो, लिखते के बाद सोचते हो। तो अब ये है कि हम ना तो लिखते वक्त सोचते हैं, ना लिखने से पहले सोचते हैं, ना लिखने के बाद सोचते हैं, ऐसी तसनीफ आई है।
2: गीत और दोहे और हाइको वगैरह भी चले थे कुछ, हाँ, कुछ वो भी बहुत ज्यादा,
0: वो सब अब त्राइले हाइको, अभी एक सिर्फ आई पिछले दिनों पांच मिसरों वाली नज़मे जो गुलजार की का मजमुआ भी आया, तो
2: पंजाब से माहिया आए थे,
0: तो इस तरह से
1: मतलब खाली से आ रही है, साफ नहीं है, वो हमने
0: बोरो की, जैसे दोहे बहुत मतलब लिखे गए हैं,
2: जमीलुद्दीन अली
1: खान
2: भी
1: लिख रहे हैं, लेकिन
2: जमीलुद्दीन अली
0: ये
1: सब है। समय अभी हम लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम आईना, और हमारे असातजा मौजूद हैं जो उर्दू की गुम होती असनाफ पर बहुत ही पुरमागज गुफ्तगू और यानी इजहार ख्याल फरमा रहे हैं। इस जमीन में एक यानी तर्जुमे
2: जो
1: का प्रैक्टिकल ताल्लुक तर्जुमे से भी, आपने बहुत से ड्रामों को यानी एक जबान से दूसरी जबान में किया, और आपने भी यानी तराजिम किए हैं एक जबान से दूसरी जबान में, इस पर कुछ इजहार ख्याल बारी बारी से फरमा दें हमारे सामईन के लिए।
2: जी, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि शायरी के मैंने तर्जुमे किए थे, तर्जुमा क्या वो ट्रांसलिटरेशन था लिप्यांतरण जिसे कहते हैं हिंदी में, और चूंकि हिंदी में और अंग्रेजी में एक बड़ा मार्केट है, पब्लिशिंग हो रही है, बहुत सारे इदारे तो आप ये समझिए कि तराजिम ही छाप रहे हैं
1: जी,
2: और उर्दू की नई पुरानी चीजें, शायरी भी है, नसर भी है, वो बराबर मार्केट में आ रही है, मार्केटिंग हो रही है उसकी
0: जी।
2: और इसमें तर्जुमे के हवाले से जो सबसे बड़ा नाम है वो है मंटू का। अंग्रेजी में, हिंदी में और दूसरी जबानों में जो तराजिम उनके बराबर छपते रहे, कई कई तराजिम अवेलेबल हैं, कुलियात बराबर आ रहे हैं, और फिर शायरी में फैज साहब और गालिब, ये दो नाम बहुत मकबूल हुए। मीर को वो शोहरत नहीं मिली जो मिसाल के तौर पर गालिब को मिली, ये हुआ। अच्छा, गालिब का ही मामला अजीब है, गालिब की शायरी जो खासी मुश्किल है, बहुत सारी चीजें आज भी समझ में नहीं आती हमारे, उसको जो पॉपुलरिटी मिली, गालिब के खतूत कहीं पिछड़ गए, जबकि मुझे लगता है कि गालिब के खतूत जो हैं वो भी इतने अहम हैं, और खासतौर पर उस असर को समझने के लिए। तो तर्जुमे का और बाकायदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, ट्रांसलेशन स्टडीज पढ़ाई जा रही है, ट्रांसलेशन के कोर्स डिप्लोमा किए जा रहे हैं, ट्रांसलेटर्स की पोजीशंस भी होती हैं, ये सब हो रहा है, फिर तबसरे भी आ रहे हैं उनपे, तो तर्जुमा भी मेरे ख्याल में एक अहम सेक्टर खुल गया, जैसे जैसे पब्लिशिंग ग्रो कर रही है तर्जुमे भी ग्रो कर रहे हैं।
0: बल्कि उर्दू में जो बहुत सी नई असनाफ जो आई है वो तर्जुमे की मदद से ही आई है
2: जी,
0: कि जैसे हाइको है, त्राइले है, हाँ सोनेट है, हाँ तो ये जो असनाफ हमारे यहाँ है वो दरअसल अगर पहले तर्जुमा हुए बाद में हमने उसमें तबा आजमाई की।
2: इंशाइया
0: का मामला भी ऐसे से आया, और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सैयद ने पहला लिखा था इंशाइया, या उस तरह से वो चीजें हैं, लेकिन ये जो नई असनाफ है या इवन शॉर्ट स्टोरीज का भी जो मामला ये है, तो ठीक है हमने उसको मुख्तसर तो किया, लेकिन उसमें जितने तजर्बे किए हमने कि वो अभी जैसे
3: अभी आप समाप्त कर रहे थे अदबी मैगजीन आईना, मौजू था उर्दू की गुम होती असनाफ, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिले इरशाद। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामीन के नजर में।

मैंने जब सुनी लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म का नगमा शैलेंद्र का लिखा हुआ और मौसीकी श्री रामचंद्र की,

0: निशाद प्रोग्राम में लीजिए, आप सुनिए जोगी फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मौसीकी रवि की। सामिन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज के प्रोग्राम में हम आपकी फरमाइशें नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन का कौमी शोक मनाया जा रहा है।
1: तुम्हारे हुस्न से

3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। इस तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स तिजारत व कारोबार के वजीर कार्लोस क्योरपो कोलैबोरे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तराआत के मौजूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान दोनों ने आबनाए हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्तितम हफ्ते के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों की अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाहक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हॉर्मुज में एक कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हॉर्मुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तजारती जहाज नहीं गुजरा है। अमरीका का कहना है कि इसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फजाई दिफाई निजाम, साहिली राडार मरकज, मिजाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज शामिल हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाजरानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्रीगंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरिक जुनूब मशरिक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। ख्वातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले ख्वातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली साठघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खातून मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। इसी तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे और कांसे का तमगा हासिल किया। 23 साल की उम्र की खातून के जुमरे में 5 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। भारतीय वजन के मुकाबले में 75 किलोग्राम के जुमरे में मुस्कान ने उज़्बेकिस्तान के तोइराबा ओइशा को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि 80 किलोग्राम से ज्यादा वजन के जुमरे में प्रियंका ने कजाकिस्तान की पनार शेतगाजी को 5-0 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मुअसर
تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔

0: रमामाली बरस की पहली सेमाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुजश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा है। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हॉर्मुज पर कंट्रोल के तनाजे के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद।

चांदनी रात फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शकील बदायूनी का लिखा हुआ मौसीकी नौशाद की थी। और जी आप सुनिए संजोग फिल्म का नगमा मुकेश की आवाज में, मौसीकी मदन मोहन की और नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण।

फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना।

मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना मुझसे क्या।

0: उनकी आखिरी पेशकश शगुन फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिज पर हमारी नशर जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया और जो पुराना स्टेटस को था, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहाँ तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पे बहरीन और कुवैत में। तो इस सब से सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
2: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
3: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है विश्व के सामने।
2: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
3: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहाँ काम करते हैं, वहाँ से रिमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रिमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-90% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता।
2: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
3: नहीं नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते, सकते हैं। और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी

0: कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
1: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
0: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और कोई मुश्किलात हमको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती हैं कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कायम रहे।
1: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें, ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई सारे बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
0: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए, लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीजन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई इस जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं, तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया है? क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही है, होना इसमें चाहिए?
0: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की

0: शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इस चीज पे आधारित है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबका नाक में दम करके रखे, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रोल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन कन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हो कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को ये संदेश गया है कि देखिए, आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
0: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पे हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रखकर के हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पे प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
1: देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसे पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सके। और पूरे इस संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए, गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पे कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इस सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब ये लड़ाई पर।
0: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल

0: व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत कवालियां फनकार इकबाल अफजाल, साबिर कवाल और हमनवा।

तमाशा खुश हूँ के तबाही मेरी बर्बाद नहीं है। वो दिन गए जब रहती थी इस दिल में तेरी याद, अब तू है मेरे दिल में।

पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तजारती लिहाज से मुअस्सिर तजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सेमाही में भारत की मजमुई बरामदाद 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुजश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हॉर्मुज पर कंट्रोल के तनाजे के बास खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले ख्वातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद, गुमराहगुन और मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें एक ऐसे तजारती मुआहदे पर पूरी संजीदगी से काम कर रही हैं जो मुतवाजिन हो और तजारती एतबार से बामानी हो। नीज दोनों ममालिक के कारोबारी तबकों, किसानों, मजदूरों और सारिफिन के लिए हकीकी फवायद फराहम करे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने नई दिल्ली में अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर के साथ उनकी मीटिंग मुस्बत रही थी। दोनों फरीकों ने ऐसे मुतवाजिन और मुफीद मुआहिदों के लिए अपने अज़्म का इरादा किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक की टीमें मुसलसल राब्ते में हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल स्पेन के अपने सरकारी दौरे का आगाज किया। उन्होंने स्पेन हुकूमत के अव्वल नायब सदर और कॉमर्स, तजारत व कारोबार के वजीर कार्लोस क्योरपो कैबालेरो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्पेन के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफीद बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुजाकरात में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और इख्तिराआत के मौजूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने भारत और यूरोपीय यूनियन के आजाद तजारती मुआहदे पर भी ख्यालात का तबादला किया और कारोबारी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और स्पेन के साथ भारत के तजारती ताउन को मजीद वसत देने के तरीकेकार पर गौर खौज किया। भारत और जापान ने कल आजाद, खुले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के फरोग के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। जापान के शहर टोक्यो में मनक़िदा 8वीं दिफाई पॉलिसी मुजाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की मुजव्वजा सूरत हाल पर जामे बातचीत की और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वफद की क्यादत दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि जापानी वफद की क्यादत बैन अल-अक़वामी उमूर के नायब वजीर कानो कोजी ने की। मुजाकरात के दौरान दोनों फरीकों ने गुज़श्ता दिफाई पॉलिसी मुजाकरात के बाद से दो तरफा दिफाई ताउन में हुई अहम पेशरफ्त का जायजा लिया। इस साल अप्रैल से जून की मुद्दत के दौरान भारत की मजमुई बरामदात का तखमीना 232 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा लगाया गया है, जो कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 11.37% ज्यादा है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक जून 2026 के दौरान मजमुई बरामदात का तखमीना 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल के जून के मुकाबले 9.48% की मुस्बत नमू को जाहिर करता है। जून में जिन अहम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है उनमें कीमती पत्थर और जेवरात, इंजीनियरिंग साजो सामान, नामियाती व गैर नामियाती केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और चावल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की बरामदात गुज़श्ता साल जून के 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस साल जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। इस तरह इसमें तकरीबन 19% का इजाफा दर्ज किया गया। अमरीका और ईरान दोनों ने आबनाए हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्तिताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों की अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तश्वीश लाहक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हॉर्मुज में एक

0: कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आब नाए हॉर्मुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तजारती जहाज नहीं गुजरा है। अमरीका का कहना है कि इसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फिजाई दिफाई निजाम, साहिली राडार मरकज, मिजाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज शामिल हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तजारती जहाजरानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अयोध्या की एक अदालत ने श्रीराम मंदिर के चंदा में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमों की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्मसेन के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन एक घंटा तक पूछताछ की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्रीगंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। ख्वातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले ख्वातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी, जब जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट, जबकि सयाली साठघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने पहली इनिंग्स में 285 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 170 रन बनाकर इनिंग पूरी की थी। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खातून मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। इसी तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे और कांसे का तमगा हासिल किया। 23 साल तक की उम्र की ख्वातीन के जुमरे में 5 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। भारतीय वजन के मुकाबलों में 75 किलोग्राम के जुमरे में मुस्कान ने उज्बेकिस्तान की तोयरोवा ओइशा को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि 80 किलोग्राम से ज्यादा वजन के जुमरे में प्रियंका ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मुअस्सिर तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। रवा माली बरस की पहली समाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है, जो गुजश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा है। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आब नाए हॉर्मुज पर कंट्रोल के तनाजे के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए आप सुनिए हफीज अली खान का सरोद पर बजाया राग मियां की मल्हार।

0: प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। देश भर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने 33 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई ने इस अभियान में 440 संरक्षित और लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाया और करीब 15 किलोग्राम हाथीदांत तथा उससे बनी वस्तुएं जब्त की हैं। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In social media posts, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the U.S. trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to

सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं कार्यक्रम गीत सुना रहे जिसमें हम लेकर आते हैं फिल्म संगीत उस दौर का जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा यानी कि स्वर्णिम काल कहा जाता है।

प्रेम प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज तोल रहा है, आज रखे गंगा जल।

0: जाना उसे मिलने।
1: फादर का बच्चा कौन है? फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

Happy Hogan.

Oh, yeah.

Thank you.

0: उसी के साथ खेत सुधारे कार्यक्रम यही पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और सुबह कुछ पलों में 2 बजने को है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता

0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को होची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों की फीस पर सख्त निगरानी होगी। नए प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक फीस और अन्य शुल्क में 5% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 और अंडर 19 में 8-8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In social media posts, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. in social media.

0: साथ ही साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाखस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटर्स फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शताब्दी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। आप सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं भद्राचलम रामदास की एक रचना स्वर एम बालमुरली कृष्ण का।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म में आज आप सुनेंगे वीणा वादन, कलाकार हैं एस बालचंदर, रागम नामा नारायणी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

श्रोताएं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आपने सुना वीणा वादन कलाकार थे एस बालचंदर रागम नामा नारायणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: एम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमने आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुने, आइए मैं आपको बता दूं उसके संक्षिप्त रूपरेखा। उससे थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे अश्वतासन और तितली क्रिया के बारे में, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर देशभक्ति गीत फिल्मों से सुनेंगे आप, और 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर वरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा, और 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत के विचारों पर। 6:45 पर हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड। 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे, और 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका में आज प्रीति सुशील के भजन होंगे। 7:30 पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगा, और 8:00 समाचार प्रभात। और 6:45 पर कार्यक्रम होगा स्वर गंगा, शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुप्रिया मैत्रा का ध्रुपद राग में ध्रुपद गायन सुनेंगे, राग अहीर भैरव। 9:45 पर कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका होगा, जिसमें आज आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व कार्यक्रम सुनेंगे। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुबह के 5:00 को है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में आप समाचार सुनेंगे।
1: सिंह सिंह बनिया ने धर्म हित शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े, आरिया नाल चढ़ाए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारा सिखी केसा सुवासा नाल निवाही, तना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेतवावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जय जय खालसा जी साहिबा तह अक्षर देग त्याग पताह, दर्द की पाज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोलबा।

सदान रहत दान विवेक दान विसह दान परोसा दान तन्ना सदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री नानक साहिब अतहर गुरुद्वारे गुरु धाम दे जना

पौड़ी अब ही करना चाहिए पल अब ही ले तारी है देखे कि अपना तर कच्ची पक्की सवारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जियो प्राण है क्यों साहब मनवे सारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है।

एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आसक कांडी है सदरे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो।